वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

89.2 MHz पर ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गुंज अपने पंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म गुड़गुड़म, बुलबुलों का जादू।
2: चलो
3: अरे अरे कहां

0: डालो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे?
6: Oh, no.
5: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। hey. एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
7: सुनो।
6: Oh, no.
7: मुझे 500 रुपए देना।
6: क्या हुआ?
7: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा।
8: hey.
7: ये तो 100 रुपए हैं।
6: दिख तो रहे सही से। जल चाय बना के लाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म, बुलबुलों का जादू।
2: चलो, अरे अरे कहाँ जा?

0: हेलो,
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे?
6: Oh, no.
5: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
7: सुनो।
6: Oh, no.
7: मुझे 500 रुपए देना।
6: तो क्या हुआ?
7: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
6: दिख तो रहे सही से। जल्द चाय बना के लाओ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शुद्ध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जी हाँ श्रोताओं, हमें पता है हमारे जो रेगुलर श्रोता है वो तो एकदम से टाइम के अकॉर्डिंग अपना रेडियो सेट भी ऑन कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे दोस्त पहुँच चुके होंगे हमारे साथ ढेर सारी जानकारियाँ साझा करने और लेकर प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ श्रोताओं, गीत भी हम हर बार लेकर आते हैं और सुनवाते भी हैं आपको गीत संगीत। और वैसे भी गीत संगीत बेहद ज़रूरी होता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है श्रोताओं जो ज़िंदगी में रस घोलता है और सुकून भी बहुत देता है। कहीं भी कुछ कामकाज करना हो तो हम जो है संगीत लगा कर करते हैं तो वो काम हमारे झटपट से हो जाते हैं। अगर हम अपनी महिला बहनों की बात करें तो घरेलू काम इस समय उनके चल रहे होंगे और कामकाज के चलते जो है उनके गीत संगीत भी चलते रहते हैं तो उनके काम भी फटाफट से होते रहते हैं। एक सुकून मिलता है और गीत संगीत के बसते कब काम हो जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता है। इसके साथ साथ सखी, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें आज के दिन की ओर तो देखिए छुट्टी के बाद जब हम आते हैं रेडियो में तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि अरे एक दिन के बाद हम अपने दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हैं तो खुशी तो बनती है, क्योंकि जब अपनों के साथ मिला जाता है तो खुशी भी होती है और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि अपनों से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, हम तो चाहते हैं श्रोताओं हमारा और आपका प्यार यूं ही बना रहे। और वैसे भी कहा जाता है कि मिलते मिलाते कब जिंदगी कटती है पता ही नहीं चलता है। और रिश्ते बड़े मधुरता जीवन में लाते हैं और साथ ही साथ मधुर जिंदगी काटते काटते जो है एक

अनुभव भी जिंदगी में रहता है। तो श्रोताओं, गीत हमारी बातों का सिलसिला तो यूं चलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और आपको करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के सुविचार की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं। कहते हैं, शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहिब, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरह से एक शून्य के लग जाने से अंकों की मात्रा बढ़ जाती है, या रकम की बात करें तो वो भी बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से हाँ या ना शब्द बहुत छोटे से होते हैं देखने में, और जब ये लग जाते हैं किसी भी सेंटेंस के साथ, किसी भी बात के साथ, तो उसका जो है मतलब ही बदल देते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है हमारी यूं ही कट जाती है। तो श्रोताओं, कहते हैं, शब्दों की ताकत को हमें बिल्कुल आंकना नहीं चाहिए। जहां हमें लगे हाँ और ना ज़रूरी है, सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे अपने शब्दों पर ही हमें दुख होने लगता है कि अरे शायद हम ये ना बोल दें तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जब भी आप किसी से बात करें, बेशक आप हंसमुख है, कई बार कहते हैं ज़्यादा हंसना भी जो है नुकसान देता है। लिमिट का हर काम ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होता है। जब भी किसी से बात करें, बड़े प्यार से करें, सोच समझ के करें, ताकि सामने वाले को दुख भी ना हो। तो श्रोताओं, फ़िलहाल हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के जीवन में दुख आए या वो दुखी हों। हम चाहते हैं हमारे श्रोता हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आइए आपकी मुस्कुराहट को और दुगना करते हैं और अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं राजा फिल्म का यह प्यारा सा गीत। तो आइए इन्जॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदर की। श्रोताओ, वैसे तो आपको पता ही है कि आजकल जो है मौसम भी अपने रंग बदलता ही रहता है। पल में थोड़ा सर्द मौसम हो जाता है और पल में ही गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा इस बदलते मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है और अगर नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे और ध्यान रखेंगे तो हर मौसम को हम इंजॉय कर पाएंगे। कभी बारिश हो रही है तो हल्का फुल्का मन कर रहा है कि स्वेटर पहन ली जाए और जब तेज़ धूप लग रही है उस समय मन करता है कि ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल जाए। जी हाँ श्रोता, इस बदलते मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखते हैं तभी तो कहीं ना कहीं मौसम को सही तरीके से जी पाते हैं और सेहतमंद रहकर मौसम का इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान रखकर कुछ भी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रोता थोड़े बहुत भी बीमार हों। हम तो हमेशा ऊपर वाले से भी यही दुआ मांगते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी को इंजॉय करें, अपने कामकाज को इंजॉय करें, अपनी फैमिली में इंजॉय करें और ज़िंदगी को हर तरीके से जीने का मज़ा लें। जी हाँ श्रोताओ, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें एकदम से फ्रिज से निकाल कर नहीं खानी है और सर्द गर्म चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हो सके तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं हल्की फुल्की स्वेटर ज़रूर अपने साथ रखें क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग इनका ध्यान हमें ही रखना होता है। और फिलहाल श्रोताओ, हमें आपका ध्यान रखना है क्योंकि कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20 और हम आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है, अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर में 17 में से 12 और सोलन जिले में 17 में से 12 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सोलन नगर निगम में भाजपा की जोरदार जीत के बाद बीडीसी और जिला परिषद नतीजों में भी अधिकांश भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सलोगड़ा और मनसार पंचायत समिति वार्डों से निर्वाचित मनीष कुमार और कुमारी शीला ने अपनी जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की जीत का करार दिया और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया।
2: मेरी जीत नहीं है, इस सलोगड़ा और मनसार के लोगों की जीत है। जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा, हम मिलकर पूरा करेंगे। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, पूरी समस्याएं हम मिलकर उनका समाधान करेंगे।
3: देखिए, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और पूरे जिला परिषद वार्ड की 19 पंचायतों का मेरे साथ दौरा किया।
1: उधर मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से अभी तक 11 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: कुल्लू जिला में जिला परिषद की 14 सीटें हैं जिनमें देर रात तक मतगणना चलती रही, जबकि कुछ वार्डों के नतीजे सुबह घोषित किए गए। नतीजों के अनुसार जिला में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है तथा 8 भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 4 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तथा 2 आजाद उम्मीदवार हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाली सभी जिला परिषद सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं तथा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को यहां निराशा ही हाथ लगी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: इधर सिरमौर जिला परिषद के कुल 17 वार्डों में से अभी तक 12 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
5: सिरमौर जिला में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद पर काबिज होने जा रही है। अभी तक जिला परिषद की 17 सीटों में से 12 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। खास बात ये भी है कि सिरमौर जिला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को अपने गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जहां अपने गृह क्षेत्र रेणुकाजी में जिला परिषद की 3 सीटें हार गए हैं, वहीं दूसरी तरफ शिलाई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र में भी कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: किन्नौर जिला परिषद के कुल 11 वार्डों में से 9 के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
6: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक

0: स्पष्ट हो गई है। जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस परिणाम के बाद जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों का स्पष्ट बहुमत बन गया है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला परिषद के अब तक के घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। वहीं जिला के बख्तपुर वार्ड से इंदिरा कपूर विजय रही। इंदिरा कपूर ने जीत के बाद कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
2: गुरुवार की जनता से यही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे चौथी बार जो अपना प्रेम प्यार दिया है और इतने मतों से मुझे विजय बनाई है, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं को हम धीरे धीरे निपटाने की बहुत कोशिश करेंगे। जैसे आप रोड्स का ले लो, जिस तरह से जिला परिषद के दायरे में बस आएगा उसी प्रकार से मैं अपने वार्ड का विकास करूँगी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार को और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़ आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 4 नगर निगमों के चुनाव नतीजे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में भाजपा को बहुमत, पालमपुर में कांग्रेस का परचम बरकरार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, 3 नगर निगमों में भाजपा का राज, सिर्फ पालमपुर में कांग्रेस जीती। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, नगर निगम चुनाव में भाजपा आगे। दैनिक जागरण के अनुसार सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, HRTC चालक परिचालकों का अल्टीमेटम, आज वेतन नहीं मिला तो कल से नहीं चलेंगी निगम की बसें। मौसम पर हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश में 6 जून तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओ, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, आज के दिन को हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। हर साल 1 जून को इसे मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य संपूर्ण मानव आहार में दूध के पोषण संबंधी महत्व को उजागर करना और वैश्विक स्तर पर डेयरी उद्योग तथा पशुपालकों के जीविका को बढ़ावा देना है। जी हाँ श्रोताओं, इसकी स्थापना की बात करें तो इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2001 को की गई थी। तब से हर साल इस दिन को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, विश्व दुग्ध दिवस जो है, इसका उद्देश्य कृषि और डेयरी क्षेत्रों में महिलाओं के अपार भागीदारी और योगदान को भी पहचान देता है। दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चोटियों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो श्रोताओं, ये तथ्य हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। श्रोता, दूध शरीर को पोषण देने के अलावा करोड़ों लोगों की आजीविका का भी महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। बच्चों की बढ़ती उम्र में लेकर बुजुर्गों की सेहत तक दूध हर आयु वर्ग के लोगों की दैनिक ज़रूरतों का अहम हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि इसके महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और डेयरी क्षेत्रों के योगदान को सम्मान देने के लिए आज का दिन वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। श्रोता, वर्ल्ड मिल्क डे दूध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दूध एक पौष्टिक आहार है जो दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी मदद करता है। यही कारण है कि दूध बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। तो श्रोता, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारी बात गीत से पहले हो रही थी वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। इस दिन के उद्देश्य की श्रोताओं, जैसे हमने पहले भी बात की, दूध और डेयरी उद्योगों के योगदान को पहचान देने और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। साथ ही साथ दूध या डेयरी क्षेत्र न केवल शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि ये कृषि, रोजगार और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ल्ड डे के इतिहास के और थोड़ा सा हम रुक करें तो वर्ल्ड डे मनाने की शुरुआत साल 2001 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। तब से लेकर हर साल आज ही के दिन यानी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को दूध से होने वाले फ़ायदों के बारे में जागरूक करना है। ये दिन सिर्फ दूध के फायदे बताने का ही नहीं बल्कि उसके जरिए आम लोगों को ये भी बताना है कि दूध स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदाय में भी लाभ पहुंचाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं आप तक साझा करने के लिए, लेकिन फिलहाल गीत संगीत की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारी बात जो है दूध के ऊपर हो रही थी। श्रोताओं, दुनिया के कई देशों में जो पशुपालन, दूध उत्पादन, डेयरी प्रबंधन और परिवार के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है दूध भी निभाते हैं, और हमारी महिला बहनें भी बहुत योगदान देती हैं। और साथ ही साथ दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, विटामिन डी, B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ शरीर के विकास, मांसपेशियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो श्रोता, हुए ना दूध के ढेर सारे फायदे। जैसे ही ज़िंदगी में कदम बच्चा रखता है तब से दूध पीना शुरू करता है, और बुज़ुर्ग अवस्था तक हम सभी दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदों से, बहुत सारे गुणों से भरा होता है ये दूध। तो श्रोताओं, दूध के गुणों के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम के ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारियां आज हमारे पिटारे में हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके संग साझा करनी है। तो श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में। भारतीय सिनेमा के स्वर्णीय दौर के दिग्गज पार्थ गायिका थी। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती थी कि कई बार श्रोता दोनों में अंतर नहीं कर पाते थे। वे एक स्वतंत्र और बेहद लोकप्रिय गायिका थी। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 8 जनवरी 1937 में हुआ था, और करियर की शुरुआत की बात करें तो श्रोताओं 1954 में लगभग 7 दशक तक का उनका करियर रहा है। उनकी आवाज़ की बनावट जो है दोनों की एक जैसी थी, जैसे लता मंगेशकर और उनकी। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं जिन्हें हम आज भी सुनते हैं। तो आज के दिन श्रोताओं जो हैं, हम बहुत सारी उनकी बातें और जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। तो उनकी हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 770 से अधिक गीत उन्होंने गाए हैं, और मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके युगल गीत जो है बहुत ही बढ़िया रहे हैं, बहुत ही लोगों ने पसंद किए हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, थोड़ा सा हम और भी जानकारियां उनकी साझी करेंगे, क्योंकि आज जो है हम उन्हें खो चुके हैं, तो उनकी याद में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 31 मई 2026 को 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। उन्हीं की याद में आप सुन रहे हैं इस गीत को।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और हम जो है आज बात कर रहे हैं सुमन कल्याण पर के ऊपर, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और 89 साल की उम्र में उन्होंने लोखंडेवाल स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित सिंगर के जाने से संगीत जगत और उनके फैंस में शोक की लहर जगी है। करीब दोस्त भी ढेर सारे उनके हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। कल्याणपुर ने शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने आखिरी दिनों में भी वह लगातार खुद के ही गाए हुए गीतों को सुनती रही। दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का जो है निधन हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो है आज शोक की लहर उनमें जगी हुई है। 1960 और 70 के दशक में सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उस दौर में जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर दबदबा था, तब सुमन ने अपनी बेहतरीन गायिका के दम पर ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम भी हासिल किया था। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। इसी बीच सुमन कल्याणपुर की बहुत सारी यादें भी आज के दिन ताज़ा हो रही हैं, तो श्रोताओ आइए थोड़ा सा उनकी याद को हम भी ताज़ा कर लेते हैं। उनकी आवाज़ में गाया हुआ गीत भी आप तक पहुंचा रहे हैं।

तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ, एक मधुर सुरीली और दिल को छू जाने वाली आज आवाज़ आज हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। 6 दशक से ज़्यादा समय तक उन्होंने अपनी अद्वितीय गायिका से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है और ढेर सारे गीत उन्होंने गाए हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सुमन जी ने अपनी जादुई आवाज़ से भारतीय संगीत को समृद्ध भी किया है। उनके गीतों की मधुरता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति हमेशा स्मृतियों में बसी हुई है। उनका निधन संगीत जगत के लिए एक गहरा नुकसान है और जिसे हम आज महसूस कर रहे हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को यहीं पर देते हैं विराम और अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

0: श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आते हैं क्योंकि अभी जानकारियां आपके साथ साझा करना बाकी है। तो श्रोताओ, आज के दिन यानी 1 जून की बात हम करें, थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर रुख करें तो नेपाल का शाही हत्याकांड, भारतीय सिविल सेवा में पहले भारतीय का जन्म और भारत की पहली लग्जरी ट्रेन की शुरुआत जो है इसमें शामिल है। साथ ही साथ 1842 की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था। 1880 में पहली बार सार्वजनिक टेलीविजन सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ 1913 में भारत की पहली डिलक्स ट्रेन लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन ने बॉम्बे और पुणे के बीच में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: हम तो पंजाबी हैं, मतलब

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और आज के दिन की घटनाओं की बात हम कर रहे थे श्रोता, तो 1961 में INS विक्रांत को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ 1964 में भारत में नया पैसा शब्द हटाकर इसे केवल पैसा कर दिया गया था। और 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ साथ श्रोता 2001 में नेपाल के शाही परिवार में एक दर्दनाक हत्याकांड हुआ था, जिसमें तत्कालीन राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्य समेत शाही परिवार के अन्य सदस्य मारे गए थे। तो श्रोता अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद और अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और 1 जून यानी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो 1972 में मनसुख मांडविया भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म हुआ था। 1955 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ रहे सुरेंद्र अंगदी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1929 में नरगिस भारतीय फिल्म अभिनेत्री का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और उसके साथ साथ 1991 में राजश्री गायकवाड़ भारतीय महिला क्रिकेटर का भी जन्म हुआ था। शो तो कितने सारे लोगों के जन्म आज के दिन हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ जन्म व्यक्तियों की सबसे पहले हमने बात की थी सुमन कल्याणपुर का निधन जो है पिछले कल हो चुका है। और आज के दिन की हम बात करें तो 1996 का नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे, उनका निधन हुआ था। तो साथ ही साथ है श्रोताओ, 1987 में ख्वाजा अहमद अब्बास प्रसिद्ध फिल्म निदेशक, पटनाकथ लेखक और उर्दू लेखक थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 2001 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के राजा और दक्षिण एशियाई नेता थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ साथ 2020 में वाजिद खान प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे। तो श्रोताओ, ये तो थी आज के दिन की जानकारी। जानकारियों के साथ साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हमारी वापसी हुई है और इसी वापसी के साथ हम थोड़ी सी बात जो हम करते हैं गर्मियों की। गर्मियों के मौसम में जो है हमें मन करता है कि हम ठंडा ठंडा कुछ खाएं, जैसे फ्रूट जूस ताज़गी और स्वाद का बेहतरीन तरीका होता है। इसे हम अपना सकते हैं, रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा बना सकती हैं और साथ ही साथ हेल्दी खाना जितना हो सके हमें लेना चाहिए। हेल्दी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ श्रोताओ, चिलचिलाती धूप, तपती सड़कें और बाहर निकलने से सूखता गला मौसम, गर्मी का मौसम अपने साथ ढेर सारा पसीना लेकर आता है। ये थकान और हाइड्रेशन को लेकर भी आता है और ढेर सारे परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में ठंडा ठंडा फ्रूट जूस राहत का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका होता है, साथ ही साथ हमारी सेहत को भी बरकरार रखता है। रंग बिरंगे मीठे और ताजगी से भरपूर जूस जो है देखने में जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही सेहत के हिसाब से हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये सोचकर हमें अपनी दिनचर्या में इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये शरीर को पोषण देते हैं और बीमारियों से दूर हमें रखते हैं। जितना जूस पीना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही सेहतमंद रहना भी श्रोताओं हमारे लिए ज़रूरी है। तो श्रोताओं, अपनी दिनचर्या में हमें जूस को ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहकर हम इस प्यारे से जीवन का आनंद ले सके। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ आप जुड़े।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और मीठे से फलों की बात हम कर रहे थे। फलों में जूस की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पेय पदार्थ ज़्यादा पीने को मन करता है, और वैसे भी अगर जूस हम पिए तो हमारे शरीर को ये ताकत देता है। विटामिन और मिनरल जो है इसमें पाए जाते हैं। फल विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल का स्रोत भी माने जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और कई सारी बीमारियों से, श्रोताओं, हमें बचाते भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। इसके साथ साथ पाचन तंत्र की मजबूती की बात करें तो फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। फाइबर की उच्च मात्रा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। श्रोताओं, ये ऊर्जा का स्रोत भी माने जाते हैं। फल प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के अच्छा स्रोत होते हैं और दिन भर हमें ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करते हैं। देखिए श्रोताओं, कई बार एक छोटा सा फल हमारे शरीर को इतने सारे फायदे देता है, ये कभी हम सोचते ही नहीं हैं। तो हुए ना कितने सारे फायदे। और वजन को नियंत्रित करने की बात करें तो फल कम कैलोरी वाले होते हैं, इससे पेट भरा हुआ रहता है ऐसा हमें एहसास होता है, जिसे अधिक खाने की संभावना हमारी जो है कम हो जाती है। कई तरीक़ों से फल हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये हार्ट, बीपी, हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़, हीट स्ट्रोक से लड़ने में भी क्षमता प्रदान करते हैं। त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद रहते हैं। जूस के मुकाबले रोज़ाना फल खाना अच्छा रहता है। जूस कभी कभार और सीमित मात्रा में ले, साथ ही साथ कोशिश करें कि आप फल खाएँ ना कि जूस पिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है, इसलिए उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। कभी फल खा लिए तो कभी उसका जूस पी लिया, इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। गाजर और संतरे का जूस त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, वहीं गन्ने का जूस पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। साथ ही साथ जूस के सेवन से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। तो श्रोताओ, ये तो थी बात हमारी जानकारियों की। जानकारियों के साथ साथ फिर से गीत संगीत की, और थोड़ा सा रुक करते हैं।

चलो फिर से हम वापिस आ चुके हैं अपनी बातों की ओर, क्योंकि श्रोताओ अब थोड़ी सी और जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करनी है। कुछ मन कर रहा है कि रहने दे अगली बार के लिए, क्योंकि समय जो है वो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। तो श्रोताओ आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी बातें और जानकारियाँ साझा की हैं, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। इन जानकारियों के साथ साथ अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर से आपसे नए गीतों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। गुड बाय, टेक केयर।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म, अरे बोलो का जादू।
2: चलो, अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर?

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे? मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो। मुझे 500 रुपए देना।
7: तुम क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से। जल चाय बना के लाओ।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ऐसा काहे को होवत हई लैला, ऐसा काहे को होवत हई लैला, मनमो

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू।
2: चलो। अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी?

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: इतने सारे पैसे? मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
5: सुनो, मुझे 500 रुपए देना।
6: तो क्या हुआ?
5: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
6: दिख तो रहा है सही से। जल चाय बना के लाओ।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
3: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सागर। इस शो का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। ऑर्गन इंडिया जो कि एक संस्था है जो बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को पता चल सके कि जीवन जो यकीनन एक उपहार है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए वो उपहार शाप में तब्दील हो जाता है, लेकिन उस शाप को वापस से उपहार बनाया जा सकता है। और इसी बात को विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर भवानी सिंह। 38 वर्ष इनकी आयु है, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और एक छोटी सी विनती आप लोगों से करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और जो किसी और का जीवन बचा सकती हैं। तो सबसे पहले भवानी जी आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद आपका।
3: सर मैं जानना चाहूंगा आपके उस टाइम फेज के बारे में जब आपके साथ ये सब हुआ, तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या थे आपकी बॉडी के?
4: ये लगभग अप्रैल 2004 की बात है जब मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो उस वक्त एक स्पोर्ट शूज पहने के कारण मेरे पैर के अंदर थोड़े से कॉर्न हुए थे और उनकी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी के कारण जो पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स थे हाइपरटेंशन वो हुआ। बाद में एक महीने तक एनालिसिस किया कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाए, तब पता चला कि जो एंटीबायोटिक मेरे को दी गई थी, पेन किलर्स जो मेरे को दिए गए थे पोस्ट ऑपरेटिव, उनके कारण किडनी फेल्योर हो गई। तो पोस्ट फेल्योर जयपुर के अंदर ही मेरा डायलिसिस हुआ और एक महीने तक डायलिसिस होने के बाद मेरे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तब किडनी ट्रांसप्लांट का इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो सबसे अच्छा सेंटर था वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरे को शिफ्ट किया गया। एक महीने तक वहाँ पे फिर डायलिसिस हीमोडायलिसिस किया गया और जस्ट एक महीने बाद में मेरे फादर्स, मेरे जितने मेरे रिलेटिव थे जो किडनी डोनेट करने के इच्छुक थे, उनका क्रॉस मैच किया गया। तो सबसे अच्छा जो क्रॉस मैच मिला वो मेरे फादर का था, लगभग 55% के करीब क्रॉस मैच हुआ और फिर 9 जून 2004 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल नॉर्मल एकदम जो जीवन था, पहले प्रिकॉशन रहा 2 साल तक, अच्छा प्रिकॉशन रहा, मास्क लगा के रखना, बॉइल्ड वाटर पीना, बाहर नहीं गया मैं कहीं भी, लगभग घर के अंदर ही रहा और काफ़ी थोड़े वो प्रिकॉशंस थे जो रखने पड़े। उसके बाद में डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जॉब लग गई, हाँ पोस्ट ऑपरेटिव मेरी शादी हुई, अभी 2 बच्चे हैं और अभी मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और आज तक मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल फिट हूँ, कंटिन्यू मैं अपनी मेडिसिंस ले रहा हूँ।
3: सर इन सब बातों पर आएंगे लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके उस टाइम को अच्छे से जानना चाहता हूँ जब आपके साथ ये सब हो रहा था। लाइक जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण आपके पैर में दिक्कत हो रही थी, तो जब डॉक्टर ने आपको बताया कि किडनी खराब हो गई है, तो उस टाइम पर क्या गुजरी, पूरे परिवार में कैसा माहौल था, आपके क्या विचार थे अगर आप याद कर पाए, क्योंकि पुरानी बात है।
4: हाँ जी ये मैं रिकॉल कर सकता हूँ क्योंकि जिस वक्त पहली बार जब ये रिपोर्टिंग हुई किडनी की और उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन जो था वो 10 के आसपास आ रहा था, तो जब उसका रीजन पूछा गया तो डॉक्टर्स ने मेरे को नहीं बताया लेकिन फादर को साइड में लगा जाके बोला कि किडनी फेल्योर हो गई है तो अब इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो वो एक शॉकिंग मोमेंट था फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि आसपास ऐसा कोई केस था नहीं कि जिसकी किडनी फेल हो गई हो और हमने सुना हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरी 5,000 या 10,000 की आबादी वाले गांव था उसमें शायद मेरा पहला था, तो बहुत शॉकिंग थी ये। और फिर 10-20 दिन लगे नॉर्मल होने में लेकिन फिर जो भगवान ने कहा उसके हिसाब से ढलना पड़ा और अंततः डायलिसिस भी लिया गया मेरे को।
3: जी जी, तो किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब डायलिसिस तक पहुंच गए। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो आगे का सफर है वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से वापस एक बार विनती करूंगा, हमारे साथ बने रहिए और इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें अगर किसी के समझ में आ गई तो बहुत सारे लोगों को जो है जीवन दान मिल सकता है और उनका जीवन एक उपहार वापस से बन सकता है। पर अभी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
0: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलिए दोस्तों अपने उसी बातों के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, जिसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भवानी सिंह, जो किडनी रेसिपिएंट है। 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इनकी जिंदगी का सफर हम जान रहे थे। अभी तक इन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पर गए। और उस टाइम पर माहौल ऐसा था, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे उस कस्बे में जो इनका इलाका था, वहां पर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद सर क्या सोचा, मतलब किस तरह के विचार आपके चलते थे? कि आपको पता था कि कोई किडनी दे देगा, उम्मीद थी, या फिर ऐसा था कि नहीं बस हो गया?
2: उस वक्त ट्रांसप्लांट का तो ख्याल ही नहीं था। पहले तो किडनी फेल हो गई थी, तो पहले तो ये था कि ये इसको अब क्या करना आगे। तो सबसे पहले जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने डायलिसिस का ही उन्होंने सजेस्ट किया कि डायलिसिस कराओ अभी तो, और फ्यूचर के अंदर जब भी आपको डोनर मिले और क्रॉस मैच मिल जाए तो फिर ट्रांसप्लांट की हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर रिव्यू के लिए मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली गया, तो उन्होंने बोला कि अभी यंग एज है, तो आप डायलिसिस ज़्यादा ना करवा के ट्रांसप्लांट में शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उनकी एडवाइस के हिसाब से फिर मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी ग्रैंड मदर ने क्रॉस मैच करवाए। और जो क्रॉस मैच थे जो सबसे बढ़िया मिले वो मेरे फादर के थे। और डोनेशन के लिए तो एक मेरी सिस्टर्स भी जो अनमेरिड थी वो भी तैयार थी, लेकिन फादर ने फिर प्रेफर किया कि मैं ही दूंगा, कि वो तैयार थे इस चीज़ के लिए। घबरा मतलब इसे कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी एक किडनी मैं अपने बच्चे को दूंगा तो फिर मेरे शरीर में क्या बीतेगी। वो उनको बिल्कुल, मेरे फादर को चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल इजीली तैयार हो गए थे देने के लिए।
1: जी, और खास तौर पर बच्चा जिसकी उम्र महज 19 वर्ष हो। तो 19 साल के आप उस टाइम थे, क्या कर रहे थे उस टाइम? आप कौन सी क्लास में थे, इस कॉलेज में थे, क्या थे?
2: जी मैं उस वक्त अलवर के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, NCR में आता है, दिल्ली NCR में। उस वक्त मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वहीं पे फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रहा था।
1: तो पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। अब यहाँ पर बात आ गई थी जीवन के ऊपर, कि जीवन कैसे बचे। तो जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग आ गए थे आपके लिए, अपने जो है ऑर्गन्स डोनेट करने, अपनी किडनी डोनेट करने। पर सवाल सर यहाँ पर ये है कि लोग आ जाते हैं लेकिन सबका मैच नहीं हो पाता। जैसा कि आपने कहा कि फादर साहब का मैच हुआ आपके, ठीक है, तो आप क्या, किस तरीके से अब आप उस चीज को देखते हैं? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो आज भी मेरे हिसाब से एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोग डर जाते हैं। जबकि एक इंसान अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट करे, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, जो अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, तो उससे काफी लोगों की जिंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ऑर्गन्स डोनेट करना कितना जरूरी है, और जस्ट इन केस आपके परिवार में से अगर किसी का भी आपके साथ मैच ना करता क्रॉस, तो आपके क्या कंडीशन होती, कहाँ होते, आप कैसे देखते हैं उस चीज को?
2: पहले तो मैं यूं बता दूं कि लगभग पर ईयर 5 से 6 लाख जो पीपल है उनकी किडनी डैमेज होती है और डायलिसिस पे आते हैं। मतलब वो आदमी है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की या एक किडनी या एक ऑर्गन की जरूरत है जीने के लिए, लेकिन महज उनका मात्र 8% मान के चले 35-37,000 का ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो आप ये मानिए कि जो बाकी की जो 92% या 90% पीपल है वो डायलिसिस पे रहते हैं। डायलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर आपका जो ब्लड है एक मशीन के थ्रू हर 3 दिन के बाद में साफ किया जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के काफी चांस होते हैं और उसमें सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होती है। तो डायलिसिस में आप लाइफ जी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस हैं, और आपको हर तीसरे दिन डायलिसिस करवाना होता है। मशीन के थ्रू आपका ब्लड साफ होगा, वापस पूरी प्रोसेस से वापस आपके ब्लड में, आपके बॉडी में वो डाल दिया जाता है। तो एक पेनफुल प्रोसेस भी है और एक बहुत थ्रेटनिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका परिवार का कोई सदस्य या आपके जो मिलने वाले हैं रिलेटिव्स हैं, जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऑथराइजेशन के अधीन हो, क्योंकि काफी जगह अंग का व्यापार भी किया जाता है। तो उस चीज से परे जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपके मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आपकी दादी माँ हैं, आपके दादाजी हैं या आपके नाना जी या नानी जी, बिल्कुल जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वही अंगदान कर सकते हैं, जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से। तो अंगदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम मतलब जो किडनी होती है, जो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में भले ही 2 किडनी है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एक्टिव रहती है 60% वो एक किडनी रहती है, दूसरी तो बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहती है, जो सारा वर्कलोड लेती है वो एक ही किडनी लेती है। अगर आप एक डोनेट भी कर देते हो किसी दूसरे को तो आपके शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, डोनर इजीली लाइफ जीते हैं। तो अगर आपने एक अपना अंग या किडनी दूसरे को दे दिया तो दो जने सर्वाइव कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों से। तो एक जागरूकता बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए कि अंगदान से डोनर की कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेटर लाइफ जीता है वैसे पहले की तरह, कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है लाइफ लॉन्ग। एक कोई ज्यादा से ज्यादा एक लेप्रोस्कोपी के तीन टांके आते हैं तो 3 दिन बाद में एंटीबायोटिक के बाद में हील हो जाते हैं, और उसके बाद में ना कोई फॉलोअप है डोनर का, ना उसके बाद में कोई उसकी मेडिसिन है, ना कभी उनके कोई ऐसी कंपलसरी वो मेडिकल रिव्यू है कि उनको हर महीने में 6 महीने में साल भर में चेक करवाना है। हाँ, रेसिपिएंट जरूर प्रिकॉशनरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेता है, लेकिन डोनर के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए अंगदान बहुत जरूरी है ताकि एक नया जीवन मिल सके।
1: जी जी। अब यहाँ पर सर दूसरा सवाल मेरा कि अगर आपको उस टाइम पर वो किडनी ना मिलती, किसी का भी मैच ना करता, तो आप कैसे देखते हैं जीवन कैसा होता या नहीं होता, या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपके सामने होते?
2: ये सोच के तो बड़ा थ्रेटफुल लगता है, पेनफुल भी लगता है कि शायद मैं डायलिसिस पे होता, नहीं मिलती तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिलेटिव्स की या मदर फादर की अगर क्रॉस मैच नहीं होता तो शायद मैं डायलिसिस पे होता, और डायलिसिस पे कितना दिन सर्वाइव करता ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं आज जैसी लाइफ जी पा रहा हूँ वैसी जी पाता।
1: जी जी जी। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद इस सफर को आगे लेकर चलेंगे, और अब हम जानेंगे ट्रांसप्लांट के बाद के जीवन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको पता चले कि जीवन से बड़ा कोई उपहार है नहीं। तो ये तमाम बातें हम करेंगे भवानी सिंह जी के साथ, पर अभी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलेंगे दोस्तों अपनी बातों के सफरनामे को आगे लेकर चलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार एक खास प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है ऑर्गन इंडिया ने। उसमें हमारे साथ मौजूद है आज मिस्टर भवानी सिंह, एक किडनी रेसिपिएंट है। मैं हूँ सागर। आइए जानते हैं भवानी सिंह जी से कि उनके जीवन में जब वो फेज आया, जब ट्रांसप्लांट उनका हुआ, उस टाइम पर कैसा वो सब रहा। तो सर बताइए कि कैसे वो सब चीजें मैनेज हो पाई, लाइक कौन कौन आपके लिए सामने आए एंड क्या वो प्रोसीजर रहा पूरा। आप तो जाहिर सी बात है डायलिसिस पर थे।
2: डायलिसिस के दौरान जब ट्रांसप्लांट होता है तो जैसा मैंने बताया कि जो एमपीयू हॉस्पिटल है किडनी का नडियाद गुजरात के अंदर, वो अच्छा नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। तो अच्छा होने के साथ साथ वहाँ पे पैसे भी, मतलब एक पैसे की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंशियली भी आपको मजबूत होना पड़ता है। चूंकि मेरे फादर वेटनरी के अंदर एक बीए थे, कंपाउंडर थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफी पैसा खर्च हुआ। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरे जो मामा जी थे उन्होंने काफी हेल्प की, मेरे जो अदर रिलेटिव थे फूफा जी वगैरह वो भी आ गए, पूरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पे आए। और लगभग गुजरात के अंदर इतनी दूर से 700-800 किलोमीटर से चल के वहाँ पे आना बड़ी बात थी। तो मेरे को एक मॉरल सपोर्ट मिला कि अपना अकेले नहीं है, परिवार के साथ जो रिलेटिव भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो बहुत लकी हूँ मैं कि वो वहाँ पे मौजूद थे। फाइनेंशियली भी रूप से भी सपोर्ट कर रहे थे और मोरली भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उससे मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मैं मजबूत रहा खुद भी। और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में ऐसी बात है कि जैसे ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में जैसे 10 दिन तक तो वो आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद में मैं 3 महीने तक वहीं रहा नडियाद के अंदर। नडियाद अहमदाबाद पास में छोटा सा टाउन है, लेकिन वो अच्छा हॉस्पिटल है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट भी वहीं की है इंडिया के अंदर अभी। तो वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर महेश देसाई ने मेरा ट्रांसप्लांट किया जो गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी यूके रहते हैं। और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में हर 3 दिन से मेरे को फॉलोअप हुआ। 3 महीने तक उन्होंने हॉस्पिटल के पास में मेरे को रखा, रूम लेके रहा वहाँ पे, और बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं रहा क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन के चांस आपके शरीर के अंदर, अगर कोई दूसरा ऑर्गन अपन डालते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आपको बहुत हाई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि वो किडनी आपके शरीर में मेंटेन रहे और आपका शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करे। तो उसमें एक नुकसान ये है कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर दिया जाता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एकदम जीरो कर देंगे तो आपको दूसरे खांसी बुखार जुखाम है वो आसानी से होने के चांस रहते हैं। इसी कारण पोर्ट ट्रांसप्लांट मेरे रूम में किसी को भी आना मना कर दिया गया, किसी के जुखाम खांसी है तो उसको दूर रखा गया। मेरा अलग रूम था, खाना पीना भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बॉइल्ड करके मेरे को दिया जाता था। किसी घर पारिवारिक सदस्य की अगर किसी तरह की कोई वायरल है तो उसको मेरे से दूर कर दिया जाता था ताकि जब तक हाई डोज इम्यूनोसप्रेस की चले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने वाली दवाइयों की चले, तब तक मैं सेफ रहूं। और दिन में जो खाना है वो है जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उस हिसाब से मैंने मेडिसिन और दवाइयों को बरकरार रखा।
1: जी अब जानेंगे यहाँ तक आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपने बताया कि उसके बाद का जीवन कैसा रहा, आप अस्पताल के पास रहे, 3 महीने तक फॉलोअप चला और वो तमाम जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया। सबसे पहले आपके पिताजी के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने किडनी आपको डोनेट कर दी उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा उनका जीवन रहा।
2: किडनी डोनेट करने के बाद में जैसे साथ में ट्रांसप्लांट जब होता है तो दोनों साथ ही रहते हैं, डोनर और रिसिपिएंट। मैं जरूर 10 दिन तक रहा आईसीयू में, लेकिन उनको 3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और 3 दिन बाद में डिस्चार्ज करने के बाद में वो रेगुलर फॉलोअप पे रहे, 15 दिन बाद में फिर उनकी दवाइयां बंद हो गई। उसके बाद में मेरे साथ 3 महीने तक वो यहीं रहे, चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में थे तो अपनी छुट्टियां लेके रहे। और वहाँ जाने के बाद में जब यहाँ हम यहाँ से चले गए राजस्थान, गुजरात से जब राजस्थान वापस चले गए तो फिर उन्होंने जाते ही अगले दिन से अपनी जॉब पे वापस जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ की और उनके जो डिपार्टमेंट था मेडिकल हेल्थ उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की। तो और वो खुद भी बहुत स्ट्रांग पर्सन थे, हालांकि फिर बाद में पोस्ट ऑपरेशन के 15-20 साल बाद में जस्ट 2-3 साल पहले उनके लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
1: जी जी, लेकिन वो किडनी की वजह से जो डोनेट की उन्होंने उससे कोई दिक्कत नहीं हुई?
2: नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो लंग कैंसर तो एक अलग वो अलग चीज है, वो तो उसका तो अननोन कारण था।
1: जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी तक, एंड आपने बताया कि शायद आपकी शादी भी ट्रांसप्लांट के बाद ही हुई, तो उस पूरी जर्नी के बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, कैसा अभी तक का जीवन रहा है।
2: 2004 में ट्रांसप्लांट के बाद में जब मैं 3 महीने के फॉलोअप के बाद में अपने वहाँ आया, गांव आया, तो शुरुआत में किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था क्योंकि गांव कोई मिलने वाला आता तो हो सकता है उसके वायरल हो और मेरे हो जाए। तो बिल्कुल सेपरेट रखा गया, ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना किसी शादी के अंदर, ना किसी प्रोग्राम में, कहीं नहीं जाता था। जो बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड वाटर है, उसको कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे फिर मेरी जो स्टडी थी वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो रही थी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने का फैसला किया। और एक साल बाद में मैंने बैक के रूप में, वो तो बैक तो लग गई थी 2004 वाली, तो उसके बाद में मैंने स्टडी को वापस स्टार्ट किया। 2007 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट करी। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में 2007 के अंदर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हुआ। उसी दौरान मेरी शादी हुई और उसके बाद में शादी होने के जस्ट एक साल बाद में मेरे एक लड़का हुआ और अभी एक लड़की भी है, गुड़िया भी है जो 8 साल की है, लड़का अभी 12 साल का है। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और एडिशनल चार्ज भी है मेरे पास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का, तो मैं दोनों चार्ज देख रहा हूँ।
1: कुल मिलाकर जो एक नॉर्मल जीवन होता है, मतलब वैसा जीवन आपका चल रहा है, एक सुखद परिवार है और अच्छे से आपका जीवन जो चल रहा है। अब जाना चाहेंगी स्पोर्ट्स, क्योंकि आप खेलते हैं अभी, तो कोई कठिनाई आती है स्पोर्ट्स खेलने में या कैसा लगता है या क्या वो प्रेरणा है आपकी?
2: ये तो एक माइंडसेट की बात है। हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हो जाएगी या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट इतना हैवी नहीं करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में बिल्कुल नॉर्मल एकदम एग्जिस्टेंस है तो आप बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। पहले मैं ट्रांसप्लांट से पहले क्रिकेट वगैरह खेला करता था, लेकिन इंजरी की वजह से मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है बॉल ऐसी जगह लग जाए जहाँ अपना ट्रांसप्लांट हुआ, तो हैवी गेम्स को मैंने अवॉइड किया। लेकिन जो लाइटर गेम थे जिनके अंदर अपने को डायरेक्ट इंजरी नहीं हो, बैडमिंटन है, चेस है, पेंटांग है, लॉन बॉल है, इनके अंदर पार्टिसिपेशन चालू किया और धीरे धीरे धीरे धीरे आज मैं अभी इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके लिए फाइनल हुआ हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर जो 2023 के अंदर अभी जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं उसमें मैं इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
1: कौन सा गेम है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
2: मैं वैसे तो ग्रुप है गेम्स के, 3 गेम्स है, एक है लॉन बॉल, एक है पेंटांग और एक है डार्ट।
1: आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप जाएं और परचम हमारा लहरा कर आए। सर यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मतलब इतना सब हुआ अभी तक, आप ट्रांसप्लांट के बाद 19 साल का सफर आप तय कर चुके हैं, एक चीज बताइए, मानते हैं आप कि जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है?
2: बिल्कुल, जीवन तो एक अनमोल उपहार है, क्योंकि जिस वक्त मैं बिल मौत के कगार पे खड़ा था उस वक्त कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और मेरे को लग रहा था कि शायद कल का मैं सूरज देख पाऊं या नहीं पाऊं, लेकिन जब मेरे एक दूसरे का अंग मेरे शरीर में आया और आज मैं जी रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि उसको मैं आज देख पा रहा हूं, जीवन को अच्छे से जी पा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से सबको अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डोनर है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उनके परिवार का एक सदस्य, उनका एक रिश्तेदार एक नई जिंदगी प्राप्त कर सकता है और जो जीवन वो जी रहे हैं दाता, वो एक रिसिपिएंट भी बढ़िया और शानदार जीवन जी सकता है।
1: जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है। तो भवानी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, जबकि एक दर्द भरा फेज था आपका, उसने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लोगों को बताया। तो दोस्तों आपने सुना भवानी सिंह जी के विचार, आपने सुने 19 साल का एक लड़का जिनको दिक्कत होती है और किडनी पता चलता है दोनों खराब हो गई है, डायलिसिस फिर जाते हैं और जीवन एक शाप बन चुका होता है, जो कि हमने अपने शो की स्टार्टिंग में कहा था। उसके बाद इनके पिताजी उठकर आते हैं, ये लकी रहे कि इनके वो ब्लड ग्रुप मैच कर गए, जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं वो सब मैच कर गए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो शायद बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती थी, शायद अभी तक भी डायलिसिस पर हो सकते थे। तो उतनी जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन ये लकी है कि इसके बाद उनके पिताजी का वो मैच कर गया और इन्हें किडनी मिल गई और इनका जो जीवन अनमोल उपहार है, जो शाप बना था वापस से वो एक अनमोल उपहार बना। आप सभी लोगों से यही एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ कर अंगदान करिए, क्योंकि देखिए पहले तो लोग करते ही नहीं है, उसके बाद लोग करेंगे तो वहां पर जाकर पता चलेगा किसका मैच कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है, एंड कौन क्वालिफाई कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो रेशो है बहुत कम रह जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स लग चुके होते हैं। कोई आखिरी पैगाम जो आप लोगों को देना चाहते हैं जिस टाइम आपको सुन रहे हैं?
2: मैं जितने भी श्रोतागण ये चैनल सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो किडनी फेल्योर्स के जो कारण है वो हमारी अज्ञानता भी है। जैसे हम बाजार में अपने को पेन हुआ और पेन किलर्स ले आए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उन जो पेन किलर्स हम डायरेक्ट मेडिसिन से खरीद के ले आते हैं और ले लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पेन किलर्स हैं उनका लेने से किडनी फेल हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स लगे, भारी सर दर्द हो रहा है, तो अपनी मर्जी से पेन किलर्स ना लें, प्रॉपर उसकी जाँच करवाएँ और जो डायबिटिक हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं वो कंटिन्यू अपना फॉलोअप करवाएं, क्योंकि किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण भी डायबिटीज है तो मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, अगर आपका रिश्तेदार में या आपके परिवार जनों में किसी किडनी फेल्योर या आरसीएफ से पीड़ित है तो आप उसको अपना अंग देके उसका जीवन बचा सकते हैं। किडनी देने से आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी फैमिली एक सिक्योर हो जाएगी और जो नॉर्मल जीवन एक व्यक्ति जीना चाहता है, उम्मीद करता है, वो आपकी तरफ से गिफ्ट होगा उनको कि आपने किसी एक आदमी की जान बचाई। और इससे बड़ा उपहार तो कोई है ही नहीं, भगवान ने जो आपको दी है शरीर, आपने एक अन्य व्यक्ति को एक तरह से नया जीवन दान दिया है और उसका एक नया जन्म है जो आपके कारण हुआ है। तो अंगदान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ना आपके शरीर में किसी तरह की कोई क्षति होती है या काम के अंदर कोई दिक्कत होती है। जैसा आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो ये जो कोई मिथ्या है ऐसी कि कमजोरी आएगी या फिर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, आशा करता हूँ जो मूल्य आप लोगों को देने के लिए हमने शो स्टार्ट किया था वो हम दे पाए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भवानी सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जाते हुए वापस से एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं होता, कईयों के लिए बीच में दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करिए किसी और का जीवन जो आप वापस से एक अनमोल उपहार बना सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑर्गन इंडिया की पहल, जीवन एक अनमोल उपहार, आप सुन रहे थे। मेरा नाम है सागर, फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्य

मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दो।
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू।
2: चलो।
3: अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी की?

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे?
6: Oh, no.
5: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
7: सुनो।
6: Oh, no.
7: मुझे 500 रुपए देना।
8: तो क्या हुआ?
7: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
8: दिख तो रहा है सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

कुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh, no.
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh, no.
6: मुझे 500 रुपए देना।
5: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
5: दिख तो रहा है सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

कानी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता शुतो आजकने दिने दी यहाँ गल करिए ता आजकना जिड़ा दिन है से तो हाँ वास्ते भी बेहतर खास है कने यहाँ वास्ते भी बेहतर खास है। हर दिन अहाँ वास्ते खास हुंदा कने जिड़ा

अजकना दिन ऐसे ज़्यादा खास है कि जिंदगी का सफर ऐसे अहाँ जो हर दिन जिड़ा अहाँ दी हर दिने दी नई सुबह ऐसे अहाँ जो कुछ ना कुछ जरूर जिड़ा ऐसे सिखाई करी जाती है। 1 जून 2026 दी अहाँ गल करिए जिड़ा जून का महीना है सभी शुरू हुई है कने समय जड़ा से अहाँ वास्ते बिल्कुल नहीं रुकी सकता। समय जड़ा से अपने हिसाब ने चलता है पर अहाँ जो समय के अनुसार चलना चाहिए। अगर अहाँ समय के अनुसार चलते न तो अहाँ सारे ही काम जड़ा से समय अनुसार करते न। जिन्हें कि तुह सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर करने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात जड़ा से जरूर करी सकते। तो गलबात करने वास्ते जड़ा अहाँ का नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे न तुह सारे ही इस नंबर जो जड़ा से नोट करा। नंबर है 7018117091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम का आगाज कर देने कने तो हाँ सारे भी अगर अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला कने नहीं जुड़े हो ना तो जल्दी जल्दी जुड़िया।

0: तुह सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत जेड़े से हाँ इस गीत कन्ने कीती है कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते कन्ने आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है जेड़ा अजकना आहंदा विषय से भी जरूर तुह तक पहुँचाना है। अजकना जेड़ा विषय से वे सोशल मीडिया का जेड़ा प्रभाव है से युवा पीढ़ी पर कितना ज़्यादा पोद है तेरे ऊपर आज हाँ गलबात करनी है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते दशो तो गीता च हमेशा ये लिखा कि जेड़ा हाँ खोइंदे न से हाँ जो कुछ ना कुछ जरूर सिखाई करी जाता है पर हाँ हमेशा अपनी किस्मत जो जड़े से कोसते न या हाँ खुद जो कोसना जड़े से शुरू करींदे न कने जेड़ा हाँ जो मिला दे से हाँ जो हमेशा ये सिखाते हैं कि जिंदगी च सफलता किस प्रकार पानी है या अपनी जिंदगी च अगे किस प्रकार बढ़ना है कने जिंदगी च अगर अहां दे अगे दुख दर्द होंदा है तो सभी अहां जो ये सिखाते न कि खामोश होना किस प्रकार है या मजबूत रहना किस प्रकार है क्योंकि जिंदगी का जेड़ा दर्द है ना से हाँ जो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाई करी जाता है तो मजबूत होना जेड़ा से अहां दा काम है कने अहां दा जेड़ा समय है सभी अहां दी परीक्षा जेड़ा से जरूर लेंदा है। अगर अहां बच्चे दी गल करिए ता बच्चा पढ़ाई करता है साल पर जेड़ा से पढ़ाई करता है फिर ही से अच्छी ने पढ़ाई करता है ताई जेड़ा से अपने परीक्षा च पास हो ही पाता है कने अगर से मेहनत नहीं करता है बिना मेहनत ने हमेशा ही सोचता है कि नहीं मैं सफल हो जाना तो बिना मेहनत ने तो तुह सारे जो पता है कि अहाँ सफल जड़े से नहीं हो सकते। अगर तुह ये सोचते ना कि खाना बनाना है तो उस वास्ते भी मेहनत लगनी उस वास्ते भी अगर तुह मने ने सोचते ना कि नहीं खाना बनाना है कने बनाना पौना है कने अगर अहाँ बैठी के यही सोचते हैं कि खुद ब खुद बनी आना है तो ऐसा बिल्कुल जड़े से नहीं होता तेरे वास्ते भी तुह मेहनत करते न खाना बनाते न जड़ा भी काम करते न मेहनत ने करते न अगर तुह खेती बाड़ी करते न उस वास्ते भी मेहनत लगती है अगर तुह खेतों जो जाते न ताई तुह मेहनत करी करी जड़े से अच्छी पैदावार जड़े से निकाल देन तिदा जड़ा तुहदी मेहनत का जेड़ा फल है से तुह जो जरूर मिलता है कने उन्हें दी अहां गल करिए तो जिन्हें कि आलू दी अहां गल करन या प्याज दी अहां गल करन या हाँ लसन दी गल करन अगर तुह मेहनत कीती होगी तो तुहदी जेड़ा पैदावार है से अच्छी हुई होनी है तो मेहनत तो हर जगह जेड़ा से लगती है। अहां दे जेड़ा पहले श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर देन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी तोह कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी
1: चातड़ो ते बोला दे
0: जी चातड़ो आड़े दे क्या हाल चाल है जी क्या काम कार छेड़े तुहां
1: काम कार हुण राजनीति ते बेले होई ना
0: जी अच्छा राजनीति ते बेले होए हुण कोई और काम कार छेड़ना पौना ना जी
1: ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆੜੇ ਲਾਣਾ ਪੋਣੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਪਰ ਯਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਥੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਆੜੇ ਲਾਣਾ
0: ਪੋਣੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਰੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਈ ਲਿਆੜੋ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੋਣੋ
0: जी जरूर जी मेहनत हर जगह लगती है ना जी मेहनत
1: जी मेहनत कितनी बने ना
0: जी जी जरूर जी जनता दा जेड़ा जनता ने ही उम्मीदवार चुने है ना जी
1: जी
0: तो आज तुहां कुन दिया गीत सुनना पसंद करगी जी
1: गाना सुनाई दिया जो तुहां मेरे खेलन मां
0: जी मेरे खेलणुआ तेरियां बधाइयां तेरे कन्नै आईयां ना जी।
1: हां जी इन्हें सुनाई दे बोलना चाल नई नई सरकार मणि था।
0: जी जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा
1: धन्यवाद।
0: जी। तशो तो सुन देनी साहब प्यारी दिया फरमाइश है जो तुह सारे भी इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आबूला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कन्हे तुहां सारे सुनिया ई प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश फरमाइश तुहां सारे जो पता है कि यहाँ जो आई थी चैतड़ु ते कन्हे तिना दा नाव है मंगल जी तिना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कन्हे तुहां सारे ही इंजॉय की थी अपनी गलबात पर जिहड़े इस यहाँ वापिस आते हैं सोशल मीडिया का जिहड़ा प्रभाव है से युवा पीढ़ी पर कितना ज़्यादा तिदा प्रभाव अहां ये बोली सकते कि सकारात्मक भी हैं कने नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक प्रभाव की अहां गल करिए तां ज्ञान कने कौशल का जिहड़ा विकास है से सोशल मीडिया पर अहां करी सकते करियर दे संबंधी जिहड़ा नए अवसर हैं सभी अहां सोशल मीडिया पर जिहड़े से करी सकते कने मतलब अगर सोशल मीडिया दा हां सही चीज़ा वास्ते यूज़ करते न ता सबसे अच्छी गल है कने अगर हां नकारात्मक प्रभाव की गल करिए ता मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर जिहड़े से बिल्कुल दिखने जो मिला था इसी कने समय दी जिहड़ा बर्बादी है सभी तो हाँ दिखते होने न कि हाँ अपने जो समय जिहड़े से नहीं दे पाते न कने हमेशा हाँ ये बोलते न कि हाँ समय जिहड़े से बड़ा कम है। अगले जिहड़ा श्रोता न पहले कर दे न तिना कने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी
0: जी ठाक जी ठीक ठाक हैं जी तो हाँ ठीक ठाक हैं ना
1: हाँ
0: जी तो हाँ कुत्तों ते बोला दे कि ने तो हम दा ना किया है जी
1: माया बोला भी सुकड़े पे
0: जी माया जी क्या हाल चाल है सुकड़े आले अंदे
1: हवा ठीक है जी
0: जी क्या काम कार छिड़े तो हाँ क्या करा दे आज
1: अच्छा काम कार लाना वो फिर रोटी खा दी करा प्रोग्राम में सुना दे
0: जी अच्छा खाना वगैरह जिहड़े से खाई बैठे कने उन प्रोग्राम में जिहड़े से ध्यान ने सुना दे कने रेस्ट भी करा दे काली
1: काली फिर मैच करी बैठे कने काली ही सुन लेंगे
0: जी चलो अच्छी गल है जी वैसे भी दोपहर 10 में है ना जी
1: हां
0: थोड़ा दिया मन भी चेंज हो जांदा कने अपना मन भी लगे रहता हां जी हां
1: जी बड़ा अच्छा लगदा प्रोग्राम
0: जी
1: ताम पहले एक दिन 4 बजे का
0: जी
1: 4 बजे का उठना
0: जी
1: बजे ठीक
0: है जी अच्छा अच्छा जी ता माया जी आज तो हां कुंदिया गीत जड़े से अपनी पसंद जो
1: जी कौन जो का सुना गया फुल्ला बेच के गुजारा करना
0: जी अच्छा फुल्ला बेच के गुजारा करना
1: जी
0: जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुंचा देन
1: जी
0: जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: तो धन्यवाद
0: जी तो शो तो अगले जेड़ा श्रोता है ना सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
2: और जनाब ठीक ठाक है ना
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तो हाँ ठीक ठाक है ना
2: जी महाराज जी यहाँ तो नो पर नो जी
0: जी जरूर जी नो पर नो ही चाहिए देना जी
2: बिल्कुल जी, जी इंसान जो सदा खुश ही रहना चाहिए
0: जी।
2: दूसरी गल जेड़े रिजल्ट निकली है ना जो
0: जी जी
2: ये भी बड़ी खुशी हुई है
0: जी खुशी हुई है
2: दूसरी गल होंगी कि जेड़ा चलन चाल बिल्कुल अच्छा होंगे।

0: सारे ने बड़े प्रेम प्यारे ने बोल दे है ना,
1: जी जी
0: कने जित जान जित कुछ राम राम बोलते, कोई पैरी हथे लाने, कोई क्या लाने, तेना इश्ती बड़ी होंगी
1: जी, जी,
0: फिर जल है बूटा पर खड़ोते तलू सह गला गलांदे यार फलाना बंदा ठीक है
1: जी,
0: हां बोर्ड किसी पाना है
1: जी।
0: दूसरी गल है कि कोई मतलब कुशियो पूजा दा, कोई कुशियो पूजा दे भी गल सच्ची है
1: जी जी।
0: तो पर जिसके कर्मा च लिखे होंदा तो मोर तो तिशियो लगनी है
1: जी।
0: क्योंकि कहते कर्म क्या नहीं कि तू अच्छे कर्म की तू कितनी अच्छी कमाई की, जे तो किसी कर्म पर मोर लगती कहते साई बनता फिर
1: जी।
0: जहां तो यह गल बड़ी खुशी है कि बनी है लोग सारे पर लोगों का सुधार क्या अच्छा होना चाहिए उन्हें
1: जी। सुधार ताई जनता ने अच्छा जेड़ा उम्मीदवार है इसे चुने है ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी ताई चुने हैं
1: जी।
0: हाँ जी
1: जी कने तो हाँ गल की थी कि व्यवहार जेड़ा इसे बड़ा मायने रखता ना जी।
0: जी हाँ जी
1: जी। जालू भी यहाँ कुसी ने प्यारे ने गल बात कर देन या अपना व्यवहार या अपने जेड़ा संस्कार है से अच्छी तरीके ने रख देन तो अगला जेड़ा व्यक्ति है सभी खुश होंदा ना जी।
0: हाँ जी महाराज बिल्कुल खुश होंदा जी।
1: जी क्योंकि से भी अपने मन च ये सोचता कि नहीं फलाने दे बच्चे जो इतने अच्छे संस्कार हैं चाहे कोई भी है ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी। पर आज के दौर दी यहाँ गल करना तो कुछ ही ना कुछ ये चीजा बिल्कुल कम है ना जी।
0: हाँ जी बिल्कुल कम है जी। हाँ जी ये कम ही है भाई दे रहे आदि
1: जी जी जी। तो तुम्हें क्या लगता क्या कमी का कारण है, क्या किस कारण है ये चीज़ा बच्चे अंदर ज़्यादा गुस्सा प्रेम भावना बिल्कुल कम है।
0: हाँ जी कम हो गई जनाब ठीक बोला जी। ये सारे जितने भी हैं ये मोबाइल खत्म किए ही
1: जी, जी।
0: पहले ठीक थे जितने मोबाइल चले उतना ही खराब हो गया है
1: जी। तो आज यहाँ गल बात भी यही करा दे कि सोशल मीडिया का जेड़ा प्रभाव है से युवा पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव भी है नकारात्मक भी है, पर सही है ना कि हाँ अगर सही यूज़ कर दे ना तो हाँ वास्ते अच्छा है ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल जी
1: जी। मोबाइल फोन का अगर हाँ हमेशा यूज़ करा दे ना तो हाँ समय की जेड़ा बर्बादी है से जरूर आँदी है ना जी।
0: हाँ जी हाँ
1: फिर यहाँ ये बोल दे कि हल समय नहीं है, समय तो हल है पर हाँ किस प्रकार समय की जेड़ा घड़ी है हाँ उस जो तो नहीं रोकी सकते ना जी।
0: नहीं जी
1: जी। तो उस प्रकार चलना तो हाँ दा काम है ना जी कि यहाँ किन्ना चल दे ना किन्ना अपने काम कर दे ना जी।
0: हाँ जी
1: कल्ले पर अगर हाँ निर्भर रहते ना तो कुछ ना कुछ से काम जेड़ा ना से कल्ले पर ही चली आते ने या हाथ इस कम में जो कल कल करते से बिल्कुल नहीं आते।
0: हाँ जी
1: जी जी। दास तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
0: हाँ जी जी गीत मैं सुने सुनना जो परसों सुने हाँ बोलिया राम नाम केड़ी है बेला जपना
1: जी। अच्छा राम राम केड़ी है बेला जपना।
0: हाँ जी
1: जी भजन प्यारा है ना जी।
0: जी महाराज जी
1: जी जपने वास्ते टाइम ही नहीं है ना जी।
0: नहीं जी टाइम है पर जेड़ा काल भगवान है नी
1: जी
0: उन्नी प्यारा पाई क्या कि अच्छी जगह नहीं जान धर्मे के पक्षे नहीं जान
1: जी जी।
0: पर धर्म भी एक ऐसी चीज है समझा पे आया जरूर परमात्मा का नाम लेंदे
1: जी। अगर हाँ थोड़ा दिया भी याद करी लेंदे ना तो मैं यहाँ जो थोड़ा दिया खुशी होंदी है ना जी।
0: खुशी होंदी है ना परमात्मा के रजिस्टर च लिखा जांदा सा
1: जी जी।
0: हाँ जी
1: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दें जी। धन्यवाद।
0: अच्छा महाराज जी धन्यवाद महाराज जी
1: जी। तुहंदा भी धन्यवाद जी
0: जी जी
1: जी, जी। ताशो तो जल्द ही ना अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दिया और अगे बढ़ाते न सुनते इस प्यारे दे भजन जो।

92.2 MHz पर ये तुहा सारियंदा अपना रेडियो गंजन धर्मशाला माया जी दी फरमाइश तुहा सारे ये भजन सुनिया करे फिर त्यहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर तशो तो अच्छे कन्ने अच्छे जिड़ा शब्द हैं सहाँ जो हमेशा रखने चाहिए पर एक गल भी है ना कि कई बार होंगे ना कि अहाँ ये सोचते कि अगला जिड़ा व्यक्ति है सहाँ कन्ने बुरा करा दा तो अहाँ भी अपने जिड़ा सोच विचार हैं से नकारात्मक वेच सोचना शुरू हो जाते यहाँ भी ये सोचते हैं ना कि यहाँ भी बुरा जिड़े से अगले व्यक्ति कन्ने करना है या तिनी जिड़ा व्यक्ति है तिनी यहाँ कन्ने बुरा कित्या पर गल भी है कि हीरे च जिड़े से हीरा अहाँ तरासी सकते पर कीचड़ च अहाँ कीचड़ जिड़े से बिल्कुल साफ जिड़े से नहीं करी सकते अगर कीचड़ है तो कीचड़ जो बिल्कुल साफ जिड़े से नहीं करी सकते तो सह तुहदे कर्म पर निर्भर करता है कि तुह अपने जिड़ा कर्म मन से किस प्रकार रख देन अगला जिड़ा अगला व्यक्ति है अगर से अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखा था तो तुह अपना जिड़ा व्यवहार है अपनी जिड़ा सोच है से हमेशा अच्छी रखा इसी कन्ने हाँ थोड़ा दे अगे वर्ध देन कन्ने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं तो हाँ सारी भी इस प्यारी दी फरमाइशा जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने एक बारी फिर ते तो हाँ सारे ही माटी दे मह कार्यक्रम दे सफर शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। समय की अहाँ गल करिए तो समय जड़ा इस कार्यक्रम चोई है 2:36 तो अशो तो रिश्त की अहाँ गल करिए धागा कने जड़ा अहाँ दे रिश्ते न से दोनों ही बड़े नाजुक होंगे, पर फर्क बस इतना होंदा कि धागा जड़ा इस अहाँ तिस जो खिंचते न ताई से टुटदा है, पर रिश्ता ता टुटदा है चलो अहाँ अपने अंदर थोड़ा दिया भी अहंकार जड़ा से रखते हैं। तंता बोलते ना कि रिश्तों जड़ा अहंकार है से अहाँ जो नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दिया झुकना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। अगर अहाँ झुकी आते हैं तो अहाँ कुथी ना कुथी अपने जड़ा रिश्ते न तिना जो बचाई लेंदे न, जड़ा रिश्तों का जड़ा डोर है अगर तुह सारे चाहते न कि अहाँ प्यार भावना ने संभाली करी रखने न तो जरूर अपना जड़ा अहंकार है उस जो साइड रखा कने झुकना भी कई बार जरूरी होंदा। रिश्तों की जड़ा डोर है इसे बड़ी नाजुक है तो अपना जड़ा व्यवहार है से हमेशा पॉजिटिव रखा, अच्छा रखा। अगर अहाँ अच्छा सोचते न तो अहाँ के जड़ा रिश्ते न से हमेशा कायम रहते न। इसी कन्ने अहाँ गलबात करा दे न सोशल मीडिया का जड़ा प्रभाव युवा पीढ़ी पर किस प्रकार है। अजकने दौर की अहाँ गल करिए ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर जड़ा से चाहे बच्चे न चाहे युवा पीढ़ी है चाहे बड़े न हर कोई जड़ा से अपना सोशल मीडिया पर समय जड़ा से देता या मोबाइल फोन पर अपना ज़्यादा समय देता। अगर अहाँ घरे की गल करिए तो कुथी ना कुथी घरे दा बाकी सदस्य न से आपस गलबात करा देना बच्चा अपने ही बिजी है उस जो क्या फिक्र है मोबाइल फोन दी, तो थोड़ा दिया मोबाइल फोन जो साइड रखा कने अपना जिड़ा समय है से अपनी फैमिली जो दिया। उन दो सोचा थे उन्हें कि नहीं हाँ वास्ते मोबाइल फोन भी जरूरी है, पर अगर तो हाँ आजकने दिने दा जिड़ा समय है से खोई देना तो आजकना जिड़ा दिन है से तुह जो नहीं मिलना है। जिन्हें कि तुह सारे जो पता है कि 2:38 हो दी तो तुह वापिस 1 वाला समय जड़ा से नहीं पाई सकते, से समय जड़ा सियाह के हाथ से निकल ही आ। अगर तुह इसकी कदर की तो अच्छी गल है, तुह अपनी फैमिली जो समय दिता तो मैं बड़ी अच्छी गल है। कशो तो थोड़ा दिया फिर अहाँ अपने कार्यक्रम के सफर जो अगर बढ़ाना है क्योंकि गलबात कने जलू गीत संगीत जुड़ी आंदा है तो कार्यक्रम का जोड़ा सफर है से और भी प्यारा जड़ा से लगता है, तो इस सफर जो और प्यारा कर देना कने अपनी गलबात कने इस गीत जो जोड़ देना।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियोगुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनया एक गीत। इसी गीत कन्या हाँ फिर ते वापिस आईयो ना अपनी गलबात ऊपर। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आईयो वे व्हाट्सएप दे थ्रू तिना दा नाव है मुस्कान जी कने से डैने आले नरवाना ते तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इस गीत के सफर का जोड़ा इंजॉय है से जरूर ले आना है। इसी कन्ने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर करा देने न कने हाँ जेड़ा गल बात करा दे न से करा दे न कि सोशल मीडिया का जेड़ा प्रभाव है से युवा पीढ़ी पर किस प्रकार जेड़ा है से नज़र होता तो नज़र तो हाँ सारे जो भी होता है कि समय की जेड़ा बर्बादी अहाँ गल की कि समय की जेड़ा बर्बादी है से अहाँ कुथी ना कुथी सोशल मीडिया पर अपनी जेड़ा से करते न घंटों देर तक जेड़े से युवा अपने जेड़ा इंस्टाग्राम है या फेसबुक है उस जो चलाते हैं ना कने अपना जेड़ा करियर है उस पर जेड़ा ध्यान है से नहीं दे पाते न। वैसे भी यहाँ एक बारी इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर देना या फेसबुक चलाना शुरू कर देना तो जेड़ा स्क्रोल ऐसे करते जाते कने कितना ज़्यादा जेड़ा समय है यहाँ जो मोबाइल फोन कने लगे हो जाता है से तो हाँ सारे जो भी पता है कि तो थोड़ा जहा मोबाइल फोन जो साइड रखा कने अपने करियर पर या अपनी पढ़ाई पर जेड़ा ध्यान है से ज़रूर दिया तो अपने स्वास्थ्य का जेड़ा ख्याल है सभी यहाँ जो रखना ज़रूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य जेड़ा है से ज़रूर अपनी करवट बदलता है उन तो सोचा दे उन्हें कि किन्ना करवट बदलता है अगर तो हाँ ज़्यादा मोबाइल फ़ोन दिखते न देर रात तक जेड़ा से फ़ोन चलाने ने नींद की कमी अगर तुहां अंदर दिखने जो मिलती है तो तुहां जेड़ा से खुद जो तनाव च दिखते न या अपने जेड़ा काम मन से प्रॉपर तरीके ने नहीं करी पाते न कमजोरी महसूस करते न या सुस्ती या बीमारियां जो तेजी ते बढ़ने का जेड़ा बढ़ावा है सभी ज़रूर देंदे न। कई बार होंगे ना कि छोटे बच्चे की अगर अहाँ गल करिए तो छोटे बच्चे खाना खाते न तभी मोबाइल फोन जेड़े से तिना जो चाहिए तिना दी जिद ऐसी है कि पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते पर कई बार होंगे ना कि बच्चे हमने अगर पेरेंट्स मोबाइल फोन चलाते न तो बच्चे भी सही अपने पेरेंट्स से सीखते न तो थोड़ा दिया मोबाइल फोन जो दूरी दिया कने अपना जेड़ा ख्याल है से ज़रूर रखा अपना ख्याल रखगे ताई तो हाँ अपना जेड़ा काम है से करी सकते कने जेड़ा स्क्रीन टाइमिंग है उसकी लिमिट ज़रूर रखा कने अपने स्वास्थ्य का जेड़ा ख्याल है सभी ज़रूर रखा। रियल जिंदगी यहाँ वास्ते जीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जेड़ा रियल जिंदगी है से सोशल मीडिया पर शो ऑफ करा था अगर तो हाँ ध्यान देंदे न अपने रिश्तियाँ पर या अपनी फैमिली पर तो जेड़ा रिश्तियाँ च तनाव है या प्यार भावना जेड़े से कुथी ना कुथी दिखने जो कम मिलना थी तो से कारण भी मोबाइल फ़ोन है क्योंकि हर समय मोबाइल फ़ोन जो अपने जेड़े से यूज़ करते रहना तो कुथी ना कुथी से मोबाइल फ़ोन आंदे रिश्ते पर भी प्रभाव जेड़े से ज़रूर पा दे कने इसी कन्या चलो जागरूकता हाँ जरूर है मोबाइल फोन के फायदे भी बड़े न नुकसान भी बड़े न पर अगर हाँ तिसदा समय अनुसार यूज़ करते न तो थोड़ा ते अग्गे बढ़ते न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते कने हाँ करने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते तशो तो गल बात करने वास्ते एक बारी फिर ते तुहां तक नंबर जेड़े से हाँ पहुँचाई दे न तो हाँ सारे इस नंबर जो नोट करी लिया क्योंकि नंबर तो हाँ तक पूछ जाऊँगा ताई तो हाँ कॉल या टेक्स मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने हाँ चल दे न फ्री ते थोड़ा दे आगे बढ़ देना तो हाँ जो गीत और लेकर चल देना तो हाँ सारे भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने कने इसी कने तो हाँ एक गीत जिड़ा इसे एंजॉय कीता कने फिरी ते अपनी जिड़ा गाल बात लेकर ही तुहां तक कहाँ हाजिर जिड़ा से ज़रूर होई उन कने तो हाँ सारे भी अपने जिड़ा काम कार हैं सभी करा दे उन्हें न कने रेडियो जिड़ा इसे भी सुना दे उन्हें न काम कार करना तो ज़रूरी है काम कार जिड़ा से अहां दे हमेशा चले रहेंदे पर इसी कने एक गल दा जिड़ा ध्यान है से अहां जो हमेशा देने लायक है कि अपने स्वास्थ्य दा जिड़ा ख्याल है से अहां जो रखना ज़्यादा जरूरी है। कई बार अहां ये भी सुन देना या खुद भी बोल देना कि पहला काम जिड़ा है से अहां वास्ते जरूरी है पर तुहें क्या लगता तो हाँ सारे जो यही लगता ना कि काम पहले ज़रूरी है कि सेहत ज़रूरी है मेरे आइडिए ने तो सेहत ज़रूरी है फिर ही काम जिड़न से ज़रूरी है क्योंकि सेहत ठीक है ता ही यहाँ अपने काम करी पाएंगे ना अगर अहाँ दी सेहत ही ठीक नहीं है तो अहाँ काम किन्ना करी पाना तो थोड़ा देर सोच विचार करने की ज़रूरत है अपना जिड़ा ख्याल है से ज़रूर रखा कने काम दी जगह काम भी करा कने स्वास्थ्य दा ख्याल रखने दी जगह अपने स्वास्थ्य दा जिड़ा ख्याल है सभी ज़रूर रखा कने अहां भी तुहुंदा जिड़ा ख्याल है से समय अनुसार रखते रहेंदे न कने जिड़ा तुहुंदियां प्यारियां प्यारियां फरमाइशां से तुहां तक पहुँचाते न फिर ते थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने समय जिड़ा है से अहां बड़ा थोड़ा दे है कार्यक्रम च तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा समय तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक तो चलते न सुनते न अगली फरमाइश।

पर यह है तुहां सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से इत्थों ही संपन्न होंदा है। तुहां सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जुदिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा, हसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनाते रहा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ।

0: विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: कुड़कुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू।
2: चलो। अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी की?

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे! मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो, मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन।

0: और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म, अरे बोलो का जादू।
2: चलो, अरे अरे कहां चली डॉक्टर।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत

0: बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
1: सुनो।
2: Oh, no.
1: मुझे 500 रुपए देना।
3: तो क्या हुआ?
1: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
3: दिख तो रहा है सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो कार्यक्रम मेहंदी अपने गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा। क्या हाल चाल ना श्रोता तुंदे, उम्मीद कर रहा हूँ कि तो एक सब खरे बुने हंसते खेलते बुने न और अपने घर है क्या सो राजी बाजी बुने है ना, अपने घर राजी बाजी रहना बड़ा जरूरी है श्रोता। तो कार्यक्रम में जो बहुत सारी गल्ला बात तू होगी करनी ही श्रोताओं, सोगे सोगे कुछ एक स्थानीय जानकारी तू सोगे सो शेयर करनी और तुम्हारा पसंदीदा गीत के ना सो असू जरूर ब्रॉडकास्ट करने था। तो सब अस होगी जुड़ी सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर अक मौके फिर हूँ रिपीट करी नो 708-8-8-709 अकबर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुनी सकते हैं, अपने क्षेत्र रही जानकारी और वो गीत साझा कर सकते हैं। पर गल्लारा ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक किया श्रोताओं सो जरूर बुआ। बहरहाल लेकर चलते तू सब भी हो श्रोताओं और अज धर्मशाला का मौसम क्या बोलता है ये जानने वास्ते तो सब उत्सुक बुने और तुस तो ज़्यादा उत्सुक बुंदा शो तो वैसे मुझे तो ज़्यादा सोच होता उत्सुक बुंदे जो कि अपने घर तो बाहर रहते हैं और रेडियो इंजन रे माध्यम तो इस कार्यक्रम रे माध्यम तो क्या सो महसूस करते हैं कि है भी अपने घर हैं ना है भी अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मंच है ना। तो इस समय गल करूँ तो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो तापमान है शोतो और हाँ जी बिल्कुल 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास तापमान है और अगर है गल करिए शोतो

19 डिग्री रे आसपास क्या सो तापमान हाँ तैया लेकर चलते तू सब भी जो बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत भी हैं लेकिन बल देना सोतो कि अपने कर्म रे सजा के असो जरूर मोल दे असो चाहे कुछ भी कर लेन लेकिन इन दे कर्म भी सजा सो जरूर मोल दे हा मतलब ये डिसाइड था सु करना कि असु कस की होगे खरे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। इंसान री लाइफ में बस बड़ी सारी चिंताएं बुंदी इंसान बेचारा बड़ी सारी चिंता होगी कि ये सो घिरुरा बुंदा हा लेकिन तसियो यह गल्ला सच में ज्ञात नहीं आ कि ये चिंता ये फिक्र ये सब मुँह माया है कुछ भी नहीं आ। इंसान सो ही बेहतरीन बुंदा जो अपने वास्ते जिया अपनी खुशी होगी कि ऐसो जिया और अपने नेचर होगी कि ऐसो जिया है ना जी। तो आइया ऐसा भी आगाज कर लेंदे पहले कार्यक्रम रा और फिर आगाज तो बाद तंदा सभी रा कॉल सासु जरूर चुकने हाँ और अन्य जानकारी के ना सो तुस हो गया सो जरूर शेयर करने। बहरहाल आर जे सचिन कपूर सोगे बन रहे तो ऐसा आगाज कर दिन कार्यक्रम रेस गीता सोगे

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसे बी एट यून कर और कार्यक्रम हिंदी अपने का पगैन सो चल रही था। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। आइए श्रोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं और कार्यक्रम मंच थोड़ा करे और हगो चलते हैं तो तू सभी हो कुछ एक जानकारी होगी कि ऐसा तू हो गया है तो सो गया है ज़रूर है जानकारी की सो शेयर कर दें। लेकिन इन श्रोतागण के अनुसोगी कनेक्टेड हैं फिलहाल कनेक्ट कर दें और पूछ दें कि कौन बल्लू दें और कड़ी थो बल्लू कर दे। हेलो हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सचिन जी। नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: करण।
0: हाँ जी ठीक न जी खरे न जिंदे बनो कभी खरे रह सकते न कुछ न कुछ तो चल रहा हूँ ना।
1: चलो बच्चे तो खरे आए बढ़िया आए चले रहे हो रहे
0: चले रहे हो रहे बिल्कुल जिंदे बनो भी जिंदगी है सौ से आप पे
1: तो ठहर ले या।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ इन्दे बन्नी माता वाली अम्मा बल्लू कर देन है ना जी।
1: मुबारक हूँ तो बहुत काले रह पे गए ठंड आ रही है जो।
0: हाँ जी हाँ जी जित गया जी।
1: और इतने पावला कभी जिंदगी में ना रो रे।
0: हाँ जी
1: ये थोड़ी पावला कभी जिंदगी में ना रे।
0: अच्छा
1: हाँ चल पंद्रह ही बोट।
0: हाँ जी हाँ जी
1: चलो समय समय की परवाह था
0: ना। हाँ भाई तुझे पता ना कि सभी बंदा ना कि आऊं आऊं तेरा लाऊं तेरा ले जाने जितने गंदे तो नहीं करते सब।
1: बिरना मार दे फिर वहाँ को इसका छेड़े।
0: हाँ फिर तो तुझे पता है यार।
1: और तबीयत खा रहे हैं कुछ ही एंडी लेकिन कर दे।
0: हाँ जी हाँ जी ठीक है तबीयत।
1: हाँ जी चलो मम्मी भी खा रहे हैं।
0: हाँ जी हाँ जी ठीक ना।
1: नमस्ते बाल ने मेरे पर फोन तो बस ठीक है तो गीत तो बस ये बस ये गुंडे उन्हीं डर रहने।
0: अच्छा जी आज ठीक रहे वो मौसम ठंडा ठंडा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ दुआ करिए रोज ठंडा मौसम।
0: हाँ जी हाँ जी चलो अबे क्या पता कहने है ना लगता बरसाला
1: क्या पता बच्चे तो अबे ऐसी हो या पता
0: कोई पता नहीं है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ठीक है जी नमस्ते। नमस्ते जी। चलिए श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा क्या ना सो लग रही हैं श्रोतो और चल रही हैं ता गीत अपनी पसंद रहा बल्लू कर दिन कोई भी गीत पुराना गीत आई होप सो कि इन दे बुजुर्ग ने तो इन पुराना ही गीत बल्लू अगे होना तो जरूर इन है पुराना ही गीत की ऐसा होने दें इन शोतों। बहरहाल तू सब भी पता होना कि आरसीबी की ऐसा चैंपियन थे और यहाँ दूजी मौके की ऐसा चैंपियन बनिया और धर्मशाला में भी मैं यही दसी था तू सो कि 11 सीट आगे सो बीजेपी रही आई ना और 5 कांग्रेस रही और आख के सो आज़ाद कैंडिडेट जीत तो आशो तो और इवन की जो विधायक सुधीर शर्मा हिन जो धर्मशाला रहे इंदे विधायक ने सुधीर शर्मा यारी तारीफ किया सो यारे बड़े चहीते सीएम जो इंदे हिमाचल प्रदेश रहे सीएम साहब ने सुखू जी तिन्या करिया कि कस प्रकार हो गई किया सो राजनीति में रणनीति किया सो बनाए गंदी और कहीं करी किया सो जीत सकते हैं तो है बाजी की करी किया सो जीत सकते हैं है ना। वाकई में बाजी जितने वास्ते कि असो दिमाग तस हिसाब रहा कूल माइंड किया सो चींदा बुंदा और तस हिसाब रहा माइंड किया माइंड सेटअप किया सो बनना चींदा हा ता शो तो यह कार्यक्रम जो हागो बढ़ने और एक खास खबर सो के हूँ अब इडी करनी हाँ एनवायरमेंट रेगल इडी करनी हाँ इडी बोने है छोटा हूँ जस घर है हमेशा डंडकला प्योरी बहुत जस घर है हमेशा कड़ा क्लेश बहुत त्यारे बच्चा कभी भी सक्सेसफुल ना हो सकते हैं त्यारे बच्चा हमेशा उल्टी राह अंदर की असो गंदहीन गलत नश अंदर की असो पेंदे और जस घर है खुशमुआ माहौल बोआ जस घर है नॉलेजफुल गल्ला भून जस घर है इंटेलिजेंसी आली गल्ला भून जस घर है प्यार भाव बोआ तस घर आ रही बी ए साल आ रही कुड़ी भी के न सो बी डी सी सदस्य के न सो बनी सकदी न जी बिल्कुल आऊँ गल करू करता हा जिला रे सब थो युवा बी डी सी सदस्य केवल 20 वर्ष ये युवती है जन जह पहले ही चुनाव में के सो पांच प्रत्याशी जो पिछाड़ी करे जीत के असो हासिल करे हा जी बिल्कुल श्रोता हूँ पंचायतीवाद संस्था रे चुनाव संस्थाओं रे चुनाव में इस बार युवा अपना मजबूत उपस्थिति की असो दर्ज करवाए हा श्रोता नया इतिहास की असो रचो जिला कांगड़ा री नागबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में महज 20 साल रे सुखविंदर कौर पंचायती समिति बीडीसी सदस्य किया सो घोषित भोया सो बने हाशतो इसी सौगी तीन पूरे जिले में सब तो कम उम्र में बीडीसी सदस्य बनने रखे सो गौरव हासिल भी करो हुआ अपने पहले ही चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर तीन क्षेत्र और राजनीति में कदम रखने वाले युवा व्यवस्था की एक नई मिसाल गया सुपेश करी देते हर्षोतम और राजनीति में बड़ा युवा रक्रेज आजकल है ना और 29 बंदे ऐसे जो यंग इन श्रोतों जारी परिणाम रहे अनुसार हम गल करूँ इस बारी 20-30 वर्ष आयु वर्ग रकुल 29 उम्मीदवार के न सोहिन लेकिन यह कुड़िए 20 साल लरी कुड़िए बीडीसी खिताब अपने ना करी लो बहुत बड़ी गल है इट मीन्स कि एरा यारा जो घरारा इन्वायरमेंट बुना सोता बड़ा क्लियर बुना जो है कुड़ी रा विजन बुना सो बड़ा क्लियर बुना बीडीसी खिताब जितने वास्ते कोई भी वो जितने वास्ते ना फटाफट करना बनता हा फटाफट क्या करना बनता कि फैसले लेने बनते ना और अपनी छाप के सो बनाने बनते अगर तुस कोई भी चुनाव जितना तो अपनी छाप के सो जरूर बनाने पैंते हा तो 20 साल की कुड़ी है कि ऐसो जीती लो अशो तो वाकई मैं बाकमाल वाकई मैं कमाल तो हम ये बोलना चाहनू हाँ जितना भी युवा इस समय हूँ करते हैं या बुजुर्ग हूँ करते हैं तीन सब भी जो ये बोलना चाहनू कि अपने घर का माहौल क्या सो प्यारा रखा डगडगात वाला मत रखा अच्छा रखा अपने बच्चे जो अच्छी गाइडलाइंस किया सो दिया बहुत इम्पोर्टेंट आजकल रहे जो पेरेंट इन या फिर जितने भी जो भी नवविवाहित इन जो मतलब ब्याहितुरी कुड़ी है ना हल्की एज में ब्याहितुरी बेशक सो मम्मी या फादर साहब त्यार है सो बनेगी ने मतलब है ना तो तीनों भी इन गल्ला रखे सो खास ख्याल रखना चाहता है कि कुड़ियों भी कि अपने पेरेंट जो कि सो इस प्रकार होगी कि सो तो है रखा कि सुहागू के सो अपना विजन के सो क्लियर त्यारा हुआ और क्लियर कर सका है ना विजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो तो और फैमिली रा इन्वायरमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सो ही तय करता कि बच्चा कस पर कस साइड गच्छा और कस साइड ना गच्छा चलिए चल देना और अम्मा जी ये फरमाइश करी था अम्मा जी री फरमाइश माँ कोई पुराना गीत अम्मे बोलो तो कि कोई पुराना गीत होना है था चलिए फिलहाल हुन देने ये गीत बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही

0: शत एफ एम एंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही ना ता शत सोगी सोगी एक स्टोरी जो तू सभी से जरूर हुनानी हाँ यह स्टोरी के नारी तो सुहा है लेकर ही चलते हैं लेकिन तथों पहले शत इन दोतगन असोगी कनेक्टेड इन पुछ दिन कौन बल लंदन और कड़ी तो नमस्ते जी। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक ना
1: गया मेरा उस मालिक दी
0: अच्छा जी कर लुगरन क्या लुगरा कमाना
1: बस क्या कमाना बस रेडियो हुनु कर जा चलाओ जा रेडियो बस गप्पा हुनु कर जा और नोई ताजी गप्पा भी हुनी ने सब कुछ हुनु कर देने अब तुम दी गप्पा है लक को ध्यान मेरा बड़ी सोनी गप्पा सुनाई तो है
0: जी
1: हाँ जी अब आके जड़ी मतलब बनी है ना पंच पंच प्रधान सब कुछ इन अच्छा अच्छा कम कमाना चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल ग्रां रा विकास तब यहाँ रे हत्या ना जी
1: हाँ जी अब अरे अच्छे महाराज जी
0: बिल्कुल
1: ये खरा कमा ले तो अपने वास्ते है ना क्योंकि जस अच्छा कमाना तो अगली बारी भी ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा न कमाओ तो मन दूर बढ़ना आरा नहीं है कम न कमाओ तो ना हो रे हृदय
0: दूर नमस्ते
1: जी दूर नमस्ते गरिंदे ने
0: सुनीता
1: हो रे यार जनाब की आजकल ऐसा के ठीक बोलू करते कि आजकल जो संसार हालात कन सो बड़े खराब चलते ने
0: खराब चल रहे जी बड़े ज्यादा बड़े ज्यादा
1: बड़े खराब हां जी अरे अब जिंदगी परमात्मा ने दी तो अच्छे तरीके से गुजारने चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अरे अगर मन की बड़े प्रेम प्यारा हो गिर रहना चिंदा अरे 20 साल की लड़की के सो जितने गए आदता है जो पता होने किन्या पढ़ दी है किन्या रल ली किन्या प्रेम प्यारा होगी सो गल कर दी पांच जितनी ना सो
0: बिल्कुल बिल्कुल बीड़ी सी किताब हाँ बिल्कुल
1: अंजी सारे होगी जय जय राम राम बड़े प्रेम होगी कनंदे तो सो जितने गए था है आशियो बड़ी खुशी बंदे आए जिन बच्चे निकाह न गए
0: निकाह बिल्कुल
1: हाँ ये जिन निकाह न तो निकाह न चिंदे ले
0: जी जनाब बिल्कुल
1: दूसरी गल है कि अस इंदे भी अगले जेड़े सियाने इन्हें अपने बच्चे पर कंट्रोल रखना चाहिए एक चीज पर अगर बच्चा पढ़ना लगू तो ठीक पढ़ू वरदा कि सोई तो ना कसूर आ गई ये भी इन्ना चाहिए ना
0: जी जी जी
1: अल कई बच्चे ऐसे होंगे कि खेलना बाहर चले जाते तीन पर नजर रखना चाहिए कि ये गया तो गया कर जगह
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ता ही पता लगूगा कि बच्चे ऐसे हैं
0: जी
1: अच्छा 24 घंटे पढ़ाई दे बच्चे ख्याल रख ले ता ये अगे पास अच्छे बनने
0: ठीक बोलते जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जनाब अजकल ये रोहना के अजकल घर वाले अपने बच्चे बड़े प्रेम प्यारा होगी रखने चाहिए
0: जी जी जी जी बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा जरूरी
1: है जेड़ी चीज मंगते तीन सो दिंदे दिंदे
0: जी जी
1: आज आदू हूं ज्यादा पैसा भी ना देना
0: हाँ जी हाँ जी
1: आज अगर आदू ज्यादा पैसे दिंदे तो तन्या पूछना बच्चा एक चीज ले दसाओ समझे कि सीधे सकून कौन चीज ले है
0: जी
1: कोई ऐसी चीज ना ले रखा कि दस पता नहीं हो तीन चीज जो इस्तेमाल गलती कर दी हो
0: जी जी जी जी
1: अजकल जनाब ये जमाना चल जाए चलो ठीक है जे बनो अजकल संसार सब ठीक है तो हजार चूल बनाई लो जी आप चाय सेकने वास्ते
0: क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया
1: हाँ जी तीन सिलेंडर के सो भरना आते जी चोरी सो
0: हाँ जी
1: इस वास्ते चूल बना लो जी बाहर चलता रहा काम
0: अच्छा ता जो मा ये इंदे बंदे तिन्या वो तो चाह पिया इंदे मतलब जो कस्टमर ही इंदा
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा चुल्ली पर चल भी रहा काम
1: हाँ जी
0: अच्छा ता हाँ जी कस्टमर एतराज तो ना कर दे कोई भी वैसे तो ये सब भी अच्छा जो चुल्ली रहा खाना बुंदा चुल्ली री चाह बुंदे या चुल्ली री जो भी चीज बुंदी है बड़ी पौष्टिक आहार बुंदे पौष्टिक आहार बुंदे
1: हाँ जी क्योंकि ये कड़ी खरी जाती है
0: हाँ जी जनाब कौन दिन गीत होना तुसु आज कार्यक्रम मंच
1: आज जनाब गीत होना महाराज जी जिया मेरिया लुड़की या गंगड़िया नाना जाना
0: अच्छा क्या बात है
1: जी महाराज
0: चलिए, कर्म बल देने इंसान कर्म करे, करा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, चिंता ना करा इंसान। चिंता और चिंता में बड़ा मतलब, चिंता में भोगी गंदा और चिंता में भोगी गंदा, आपकी बिंदु रुपर का
1: इंसान जो 24 घंटे खुश रहना चिंता जाए, जो जो बुना सो माल की जाए है पूछी गाना
0: बुना है बुना
1: है सो बुना है बुना है क्या के बाल यार तूने भी जोर पाले सो तो बुना है बुना है
0: बुना है बुना
1: है और तो फिक्र भी ना करना किसी चीज ज्यादा कि जड़ी चीज बुनी सो तो पूछी करी गानी है।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल है, सोचना है बल लेते शायद ये चीजें करे सुधरे अच्छा या ये चीजें का ठीक बचे अच्छा, लेकिन जब जो किस्मत में हाई नहीं तती हो अपने पर काबू करने पर क्या कयो समर्थन देना तक थी वो करना फोर्स करना है ना।
1: जी महाराज आधा सोचा कि हर एक चीज ज्यादा सारे चल दे कोई कसी पुजूगा कुछ कसी पुजूगा, पर जेड़ा परमात्मा से सारे कर्म ने लिख दो सो तसी मिलना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सो तसी मिलना महाराज जी।
0: जी
1: चल ठीक है महाराज जी,
0: ठीक है महाराज, लोटकियो गीत जरूर सुन देने आए है ना जी।
1: जी महाराज
0: ठीक है जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद महाराज जी।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून को रॉर कार्यक्रम इंदी अपनी का पगन सो लाइव चल रही ने इंदा श्रोता और थी जो कॉल करो कर दे थी है तो सब भी जुड़ी सकते हैं जनाब 7018887 09 आख पर आइए तो श्रोता हूँ लंदन इस प्यारे दे गीता जो बनी रहे तो सब रेडी गुंजन धर्मशाला सो गए।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुड रहा और कार्यक्रम इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रहे हैं दी अपनी गप्पा तो वीडियो सेट में चले चल देना और अगले श्रोता जो बिल्कुल कनेक्ट कर देन श्रोता तो वो गे और पूछ देन कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू कर देन। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठीक ने ठीक ठाक
1: हाँ जी।
0: अच्छा जी कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू देन।
1: मैं साक्षी बोल रही हूँ यार कितनी से।
0: अच्छा अच्छा जी साक्षी जी कौन देन गीत होना तुसु।
1: बर्माणी माता का।
0: बर्माणी माता का
1: हाँ जी।
0: और नोइता जी किना किना को आज कने दिन तुंदा
1: यहाँ मंदिर है यहाँ घूमना।
0: अच्छा कड़ी है छोड़े
1: मत्ता देखना है नाग मंदिर।
0: नाग मंदिर इंदुर नाग मंदिर खने रे
1: ए इन ए थात्री नाग मंदिर है यो।
0: अच्छा थात्री नाग मंदिर
1: जी।
0: अच्छा और कौन और कौन कौन छूरस होगे।
1: मम्मी आयो पापा है दादी भाई।
0: अच्छा मम्मी पापा दादी भाई
1: हां जी
0: क्या बात है। चलिए जी जरूर तुसु बरमाणी माता रा भजन होनंदे है ना साक्षी जी।
1: धन्यवाद जी।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने गप अगेन सो चल रही है बल देन श्रोता कि जीवन रे सच्चाई है। क्या सच्चाई है जीवन रे जरा ध्यान न होगी होने फिलहाल ध्यान हो गया अगले श्रोता जो हूँ देना है। नमस्ते जी।
2: नमस्कार सचिन क्या।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन।
2: अभिषेक कपूर बल्लू दो दाढ़ी के।
0: अभिषेक कपूर दाढ़ी थो बल्लू देन। अभिषेक कपूर जी कौन दिन क्लास में पढ़ देन तो है।
2: प्लस वन में।
0: प्लस वन में क्या स्ट्रीम अभिषेक जी तुंदा।
2: नॉन मेडिकल।
0: क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया था तो काफी ज्यादा पढ़ना पंदा होना ना।
2: हां जी हां जी।
0: अच्छा अभिषेक जी ओम सला पता तुसु।
2: हां जी
0: ओम सला
2: ये आवाज ने लिख लो होंगे।
0: अच्छा चलिए रहन दिया कुंदन गीत होना तुसु।
2: मैं ईशान भारद्वाज रा केलंगारा भाषा।
0: ईशान भारद्वाज रा केलंगारा भाषा। अच्छा अभिषेक जी ये दस कि कितने घंटे तो है पढ़ाई कर दें।
2: पांच घंटे
0: तो है पढ़ाई कर दे हिन। त्राई बजे छुट्टी बंदी स्कूल लथो। हां
2: जी।
0: त्राई बजे वो लेकर क्या शेड्यूल रन दा तुंदा अगली बजे तक। अह
2: त्राई बजे 4 बजे बंद ना पढ़ना।
0: अच्छा
2: 7:30 बजे तक
0: 4 बजे बैगंदे पढ़ना।
2: हां जी
0: तो 3 बजे तो स्कूलों इंदे 4 बजे पढ़ना भी गंदे अपने आप जो रेस्ट करने दिन देने अपने माइंड जो फ्रेश करने कर देने क्या कर देने
2: फ्रेश है
0: राती राती क्या कर देने कि फ्रेश हो चुका इंदा माइंड
2: थोड़ा घूमना जाने उस साइड
0: ऑफ। अच्छा तो कोई गेम ना खेलते तो है जेम फुटबॉल बचगो क्रिकेट बचगो। हाँ जी
2: क्रिकेट।
0: हाँ मुझे लगता कि तू 3 बजे स्कूलों छोड़ दे था घर ही चकर खाना खुना खाई के खा के 1.5 घंटा रेस्ट जरूर है करना। हाँ फिर तो अथों बाद अपना शेड्यूल चलाना ना। चलिए ठीक है जी केलंगारा वासा जरूर होने ले तो सू। धन्यवाद। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपने गप अगेन सो तो सब हूँ कर देने अपने अपने वीडियो सेट में तो यह कार्यक्रम जो हगो बन देन तो इन्फॉर्मेशन और लगातार। चलिए श्रोतो फरमाइशा दौर के सो पूरा कर देन बने रहे आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रहे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा है कार्यक्रम में हिंदी अपनी गपागन सब बिल्कुल लाइव चल रही है तो वेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। तो श्रोताओं एक इंसान के तौर पर अगर है अपनी क्षमता का इस्तेमाल ना कर सकते हैं और कीड़े मकोड़े ही है कि सुविधे हैं और जिंदगी जीने भी कोशिश करते हैं तो कोई फायदा नहीं इस जीवन रह सो तो। और जीवन सोई प्यारा सोई अच्छा जो दूजे की भावना जो समझा जो दूजे भी इमोशंस जो समझा दूजे की फीलिंग समझा और दूजे होगी कि सो अच्छा कनेक्ट हुआ ये यानी कि अपना ही फायदा अपनी बारियाँ फायदा और दूजे की बारियाँ क्या सो कुछ ना है ना कि हाँ भाई बस अपने अपना जाना सब कुछ ठीक था ठीक कर लियो सब कुछ कर लियो और बाद दूजे की बारे गया सो मुकरे गए। तो ये बहुत गलत निर्णय किया सो बंदा लाइफ रश हो तो गलत निर्णय बोले सकते ना है कि गलत फैसला किया सो बंदा है लाइफ रा कि ये गलत फैसला बंदा हश हो तो है ना कि खुश रहना बहुत ज़रूरी हो अक्सर बोलो आप खुश तो जग खुश है ना अगर तो ये दुख इनता फिरे तुम्हें वजह तो न जाने कितने मनो और दुख किया सो बोल सकते हैं। सो खुश रहना और अपने आप जो हंसते मुस्कुराते वखना किया ये भी आके ज़िंदगी जीने भी बहुत मोटी कला है सो तो।

शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून कर रो और हाँ तुम तो अपना आर जे वीडियो जो कि सचिन कपूर है पढ़ायल छो तो हूँ मुझे यानी सचिन कपूर जो दया तो है इजाजत गंदे गंदे बस ये बलना चाहो पर्यावरण जो ठीक ठाक रखा मनो रे सेवा जरूर कर मनो रे हेल्प किया सो जरूर कर छो तो हूँ और माँ बाप रे इज्जत माँ बाप रे सेवा किया सो हमेशा कर दे रो करा इन्या शब्द था हूँ सचिन कपूर लेनो इजाजत फिर मोलते चाहिए था और तुम अपने वीडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रही।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू
2: चलो।
3: अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी की डोली?
1: गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू आ आई देखे देखे लेट्स सी बड़ा आ गुलू।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: इतने सारे पैसे! मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
5: सुनो,
6: मुझे
5: 500 रुपए देना।
6: तो क्या हुआ?
5: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
6: दिख तो रहा है सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

जान सुखी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले सकल समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन मदंग और

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और अभी तो अपने अपने घरों से जो है वो निकलने का मन नहीं होगा, जो लोग 5 बजे घर पहुंच गए हैं, है ना। लेकिन जो लोग, कुछ लोग हो सकता है लेट हो जाते हैं कभी कभार इस समय जो है, वो अपने ऑफिस से घर की ओर अग्रसर होते हैं, घर की ओर जो है वो रुख करते हैं, तो रेडियो तो आपने ऑन किया ही होगा, है ना। और रेडियो गुंजन जो है श्रोताओं, वो एक अपनेपन का एहसास है, और जो लोग बाहर रहते हैं खासकर उनके लिए ये बहुत अपनापन है, और ये बहुत अपनेपन

एहसास जो है वो रेडी गुंजन दल आता है, जो लोग खासकर धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं, है ना, जो बाहर रहते हैं उनके लिए। तो बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को आज होस्ट करूँगा आप सभी के वीडियो सेट पर। 8 बजे तक का सफ़र ये सुहाना रहेगा, क्योंकि हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। आप सभी का आशीर्वाद प्यार जो है वो सदैव यूं ही बना रहे हम पर, और हम यूं ही कार्यक्रम को जो है वो चलाते रहें। श्रोताओं, देखिए, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो है वो बहुत अहम कड़ी होती है ज़िंदगी की। अगर जिसको बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलता है श्रोताओं, वो हमेशा जो है वो सक्सेसफुल होता है, है ना जी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आप तक लेके आए हैं और आप तक हम शेयर करेंगे। आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले धर्मशाला का मौसम क्या कहता है। इस समय की बात करें तो 18 डिग्री के आसपास है धर्मशाला का मौसम, और ह्यूमिडिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तो वो 91% जो है वो ह्यूमिडिटी है इस समय धर्मशाला में। श्रोताओं, तो कार्यक्रम में ये थी मौसम से रिलेटेड जानकारी। अन्य जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, अन्य जानकारियां आप तक हम ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना कि सभी अपने अपने कामों से जो हैं, कोई हो सकता है यूनिवर्सिटी से छूट रहा हो, कोई कॉलेज से, है ना, घर की ओर जा रहे होंगे, और ये गीत तो पक्का सुनाएंगे शो। तो फिर अगर आप घर की ओर जा रहे हैं तो अब लौट चले, है ना। बिल्कुल अब लौट चले शो, तो मूवी का नाम भी यही है, आप लौट चले। और अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आ अब लौट चले। ये गीत आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आइए जी चलते हैं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे गीत संगीत है हमारे पास, इसी तरह गीतों का पिटारा जो है वो चलता रहेगा श्रोतों, लेकिन साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा भी जो है वो ज़रूर चलेगा श्रोतों, ज़रूर खुलेगा। बहरहाल अब लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। तो ये मानवता से जुड़ा हुआ ये विचार है श्रोतों, कहते हैं कि दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें, दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर कभी भी आप किसी से भी बातचीत करते हैं या गुस्सा करते हैं, गुस्सा गिला करते हैं या फिर अन्य कोई चीज़ें होती हैं, है ना, वो आप करते हैं तो आप वैसा ही करें जैसा बाद में अगर कोई आपके साथ उस तरह से ट्रीट करे, आपको उस तरह से आपको बुलाए या उस तरह से आपसे बातचीत करे तो वो चीज़ फिर आपको बुरी ना लगे, वो फिर चीज़ें आपको हर्ट ना करे, वो चीज़ें आपको बुरी ना लगे। तो यही कहना चाहता हूँ श्रोतों कि हमेशा जैसे आप खुद के लिए चाहते हैं ना श्रोतों कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, हमारे साथ जो है वो कुछ ऐसा वैसा व्यवहार ना हो, तो उसके लिए आपको भी लोगों के साथ जो है वो वैसा ही व्यवहार रखना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, अच्छी बातचीत रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं दूसरों के साथ भी, क्योंकि आप खुद भी एक्सेप्ट करते हैं ना कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो। सो डैट, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गली में आज चांद छुपा, निकालिए जरा चांद को बाहर, सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर। गली में आज चांद निकला जख्म मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनेंगे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.5 दो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और गली में आज चांद निकला, जी बिल्कुल आप सभी की गली में जो है वो चांद ज़रूर निकलता होगा, लेकिन कुछ चांद जो हैं वो ऐसे होते हैं जो गली में निकलते हैं श्रोतो, है ना। और एक चांद, एक चंदा मामा तो हमारा है, वो तो हम सबका है, लेकिन कुछ कुछ के चांद गली में ज़रूर निकलते। बहरहाल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी बने हुए सचिन कपूर के साथ, और लेके चलते हैं श्रोतो राजनीति की ओर। अब आपको थोड़ी सी राजनीति से जुड़ी जानकारियां देते हैं। नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है श्रोतो। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से जो है वो बीजेपी ने 11 सीटों पर बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है श्रोतो। सत्ताधारी कांग्रेस को केवल 5 सीटों से ही जो है वो संतोष करना पड़ा है श्रोतो। निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार ने जीत हासिल की है श्रोतो। जीत के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा की क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ और मजबूत मानी जा रही है, और जी बिल्कुल अधिक मानी जा रही है। स्थानीय प्रशासन व स्मार्ट सिटी पर विवाद, धर्मशाला निगम कार्यालय के पास वन शब्द को नष्ट करने का मामला जो है वो सामने आया है। इस घटना पर अधिकारियों के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं श्रोतो, जहां एसडीओ का कहना है कि पार्क निर्माण के लिए वहां मिट्टी डाली जा रही है। इस लापरवाही के कारण स्थानीय स्तर पर स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल उठ रहे हैं श्रोतों। बहरहाल धर्मशाला के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आगामी भारत अफगानिस्तान वनडे मैच को लेकर जो है वो तैयारियां एक बार फिर से ज़ोरों शोरों से हो रही हैं, और इसी महीने तीसरी बार विराट कोहली जो है वो धर्मशाला पधारेंगे। तो विराट कोहली के जितने भी फैन हैं, जैसे वो जाते आए हैं वैसे वो फिर एक बार जाएँ, क्योंकि अभी धर्मशाला में जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच जो है वो होने जा रहा है श्रोतो। प्रशासन और एसोसिएशन जल्द ही ऑनलाइन टिकटों की बिक्री और दोनों टीमों का पूरा शेड्यूल जो है वो जारी करने वाली है श्रोतो। तो मौसम की बात करें तो धर्मशाला में आज जो है वो बादल छाए रहे हैं पूरा दिन। दोपहर के बाद थोड़ा बहुत मौसम बहुत जगह जो है वो हल्की बुछारें भी पड़ने की संभावना जो है वो जताई गई थी और पड़ी भी है। मैंने अभी देखा कि चुरानगढ़ साइड जो है वो काफ़ी हल्की बारिश जो है वो लगी भी है श्रोतो, है ना जी। और आज पूरे दिन में जो अधिकतम तापमान रहा होगा वो मुझे लगता है 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहा होगा श्रोतो, है ना जी। जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जो है वो गर्मी से राहत मिली होगी, और पर्यटक बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हुए होंगे। कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा श्रोतो, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर। बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने पन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की। होश वालों को क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है श्रोतो।

देखिए इश्क ही तो समझा सकता है ना कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये इश्क नहीं है आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इश्क कीजिए फिर समझिए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। वाकई में ये बात तो है, और जिन्होंने इश्क किया है उनको तो वाकई में समझ भी आया होगा कि ज़िंदगी है क्या चीज़ है ना जी। तो ज़िंदगी कुछ इस तरह से ही है श्रोतो। बहरहाल हम चलते हैं आगे और जानकारियों का पिटारा खोलते हैं श्रोतो। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधिसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। ये परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू की जाएगी और इसमें आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में राज्य में 66 से अधिक बादल फटने की घटनाएं, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई है। इन आपदाओं से बड़ी संख्या में जनहानि जो है वो हुई है श्रोतों, तथा सार्वजनिक अवसंरचना और निजी संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है श्रोतों। जी बिल्कुल श्रोताओं, HPVD परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजना, स्वच्छ प्रणाली तथा विद्युत अवसंरचना इत्यादि को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य आजीविका और रोजगार के अवसरों को सहज करना तथा आपदा जोखिम और बिल्कुल यानी कि आपदा में जो नुकसान है, जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो श्रोतों, है ना, इसके लिए बनाया गया है श्रोतों। और आइए सरकार पंचायतीवाद संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों तथा स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेगी ताकि ज़मीनी स्तर पर आपदा तैयारी की संस्कृति विकसित की जा सके श्रोतों। ये पहल न केवल इन कार्यों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद करेगी। श्रोतों कार्यक्रम इस समय चला हुआ है वीडियो गुंजन धर्मशाला में और कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने वीडियो सेट पर। आइए तो लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। हाय माँ डिस्को डांसर जरूर सुनेंगे लेकिन श्रोतों इस अंतराल के बाद।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी, जो कि सचिन कपूर। श्रोता हूँ बिल्कुल अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए लेके चलते हैं अब आप सभी को गीत की ओर, लेकिन सुनाएंगे आप सभी को प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर। आम डिस्को डांसर जी, बिल्कुल डिस्को डांसर मूवी से लिया गया ये गीत है। श्रोताओं जी ने अपनी खूबसूरत आवाज में गुनगुनाया।

तो आप सभी भी डिस्को डांसर हैं। मैं बताता हूँ कब बनते हैं आप सभी डिस्को डांसर, जब आपके घर में या फिर आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके रिलेटिव्स में जो है वो शादी हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो, त्यौहार हो, तब आप जो है वो डिस्को डांसर बनते हैं, है ना जी। इस गीत की तरह चलिए, बहुत इन्जॉय किया हमने वेड़ी गुंचन पर ये प्यारा सा गीत श्रोताओं, और मुझे लगता है बच्चों ने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोतागण जो है वो हमारे छोटे छोटे से स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो भी वेड़ी गुंचन को बहुत सुनते हैं। तो विजय जी की आवाज़ में ये गीत हमने सुना श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन।

कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला को आगे बढ़ाते हैं शतो। इसी तरह से अन्य जानकारियां भी आप तक पहुंचेगी जिस तरह से पहुंच रही हैं, और साथ ही साथ गीत संगीत भी यूं ही चलता रहेगा शतो। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला जिला कांगड़ा द्वारा बेरोजगार युवतियों को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए ब्यूटी पार्लर 35 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू करवाया गया था शतो, जिसका समापन पीएनबी आरसीटी निर्देशक मदन लाल और अन्य सदस्यों ने, अन्य स्टाफ ने, आरसीटी के स्टाफ की उपस्थिति में जो है वो किया गया। शतो आरसीटी निर्देशक ने बताया कि 35 दिवस से प्रशिक्षण शिविर में जिला कांगड़ा की 25 महिलाएं प्रशिक्षणितियों ने भाग जो है वो लिया था, जिसमें इन्होंने विभिन्न तरह की स्किल सीखी और प्रशिक्षण हासिल किया। साथ ही साथ इनको स्किल डेवलपमेंट के साथ स्किन केयर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सिखाई गई शोतों, है ना जी, हेयर केयर, वैक्सिंग करना, स्टाइलिंग, पार्टी और मेकअप के लिए मेकअप, मेहंदी, ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाएगी शोतों। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो विस्तार से सिखाया गया शोतों, जिससे कि वह अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर आजीविका अर्जित कर सकती हैं। और वाकई में ये जितने भी चीज़ें सीखी है ब्यूटी पार्लर के, जितने भी कोर्सेज इसमें आते हैं, चाहे वो मेकअप को लेकर हो, चाहे वो फिर मेहंदी को लेकर हो, सलून को लेकर हो, यानी कि हेयर कट को लेकर हो, है ना, तो सलून भी खोल सकती हैं अपना बढ़िया, और सारी चीज़ें जो है वो उसमें इनपुट हो जाएंगी, है ना। तो ये 10 दिन का रहा था इनका शो, तो 31 दिन मधुमक्खी पालन 10 दिन के लिए जो है वो करवाया जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको श्रोताओं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवक और युवतियां जो है वो नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम सिविल लाइन धर्मशाला पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था कांगड़ा में जो है वो संपर्क कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी संस्थान के निर्देशक मदन लाल से उनके दूरभाष नंबर 9816389602 पर या फिर ऑफिस नंबर 9459900660 पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे पता है मैंने नंबर काफ़ी फास्ट बोले हैं बिल्कुल जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो ज़रूर करना चाहते हैं इस तरह के कोर्सेज, तो आप ज़रूर इन दूरभाष नंबर पर कॉल कर लीजिए। एक बार इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है वो कहते हैं 9816389602 पर, नंबर एक बार फिर से 9816389602 पर, या फिर आप ऑफिस नंबर पर भी कर सकते हैं 9559900660 पर आप संपर्क कर सकते हैं श्रोताओं। तो जानकारियों का जानकारियों का जो पिटारा है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही जानकारियां जो है वो आप तक पहुंची जाएंगी श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, कहो ना प्यार है, है ना, अगर आपको भी है प्यार तो ज़रूर सुनिए इस प्यारे से गीत को आपके अपने रेडियो सेट पर श्रोताओं, कहो ना प्यार है, मूवी का नाम भी यही है श्रोताओं, और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये बेहतरीन संगीत आप सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में।

श्रोतो एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरसी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है और गीतों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा जो है वो भी यूं ही आप सभी वेड़ी गुंजन पर सुनते रहेंगे। आपने सभी ने ट्यून किया है आपका अपना पसंदीदा वेडियो गुंजन धर्मशाला वेडियो। तो चलिए, धर्मशाला में तो जीत आई है, मंडी और सोलन नगर निगम में भाजपा का बहुमत श्रोतों, पालमपुर में कांग्रेस का परचम जो है वो बरकरार रहा श्रोतों, चारों नगर निगम की 63 सीटों में से 37 पर भाजपा और 23 पर कांग्रेस ने दर्ज की जीत, 3 पर निर्दलीय जीत जो है वो हुई है श्रोतों, और मंडी को छोड़ तीनों नगर निगम पर जो है वो कांग्रेस ने अपना हक जमाया है श्रोतों। जी बिल्कुल, नगर निगम कुल सीटें धर्मशाला की बात करूं तो 17, कांग्रेस 5, भाजपा 11 और अन्य 1। पालमपुर में जो कुल सीटें हैं नगर निगम की वो 15 हैं, कांग्रेस 11 और भाजपा 4। मंडी की बात की जाए तो श्रोतों, मंडी में नगर निगम कुल सीटें जो है वो 14 है, कांग्रेस 1, 12 पर भाजपा का हक है और 1 अन्य पर। सोलन 17 कुल सीटें हैं, 6 पर कांग्रेस और 10 पर भाजपा का जो है वो परचम लहराया है श्रोतों। तो बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने जो है वो मंडी, सोलन और धर्मशाला में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराया है। सत्ताधारी दल कांग्रेस को केवल पालमपुर नगर निगम में ही जो है वो जीत मिली है श्रोताओं, चारों नगर निगम की कुल 63 सीटों में से जो है वो भाजपा ने 37 और कांग्रेस ने 23 पर जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। विधानसभा चुनाव में 1.5 साल पहले भाजपा ने 3 निगमों में बढ़त हासिल कर कांग्रेस को झटका दिया था श्रोताओं। इससे पूर्व धर्मशाला, सोलन और पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा था श्रोताओं। इस चुनाव में कांग्रेस केवल पालमपुर नगर निगम को ही जो है वो बचा पाई है। रविवार को घोषित चुनाव नतीजों में मंडी नगर निगम में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए कुल 15 में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस को यहां एक सीट मिली है श्रोताओं, एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मंडी नगर निगम में पहले से भाजपा का दबदबा रहा है, इस बार पार्टी ने पकड़ और मजबूत की है श्रोताओं। इसी के साथ बात की जाए तो निगम में मर्ज करने के विरोध में मंडी के वहना वार्ड पर चुनाव नहीं हुआ श्रोताओं, यह विरोध स्वरूप सभी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। धर्मशाला नगर निगम का तो आपको बताया ये श्रोताओं कि धर्मशाला नगर निगम में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीनते हुए 17 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 5 सीटों पर ही जो है वो संतोष करना पड़ा है श्रोताओं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। हालांकि पिछले चुनावों में भी धर्मशाला में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन निर्दलीयों के साथ मिलकर पार्टी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था। इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। सोलन नगर निगम में भाजपा ने 17 में से 10 सीटों जीती हैं, 10 सीटों पर जो है वो राज किया है श्रोताओं। और चलिए, ये पूरी जानकारी आप सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, और अब से ठीक 2 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे जो है श्रोताओं आप सुनेंगे समाचार वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

0: प्रति उमिन आउन लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमार संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत 2रे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंचन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। कार्यक्रम आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोतो। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और अब वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस मिलते हैं आप सभी से श्रोतो, कुछ एक और जानकारियाँ लेकर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज रक्कड़ का जो है वो आपको बताना चाहता हूँ मेला है। बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा ये मेला रहता है गांव के लिए, ना कोई भीड़, मतलब बड़ा शांतिपूर्वक मेला जो है वो ये रहता है। श्रोतों खुला खुला सा जो है वो ये मेला रहता है। श्रोतों बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं आप। गुड इवनिंग धर्मशाला। हाई तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्रोतों भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य के लिए नगर निगम धर्मशाला क्षेत्र में नियुक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित जो है वो किया गया है। श्रोतों जनगणना 2027 के लिए नगर निगम धर्मशाला में नियुक्त अधिकारी वजेंद्र कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा उन्हें जनगणना के महत्व, उद्देश्य और इसके प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा, श्रोतों की जनगणना देश के विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है, इसके इसलिए इस कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ जो है वो संपन्न करना अवश्य है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जो है वो श्रोतों मार्गदर्शन में घर घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। यह अभियान 15 जून 2026 से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2026 तक जो है वो संचालित किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के प्रत्येक भवन एवं परिवार से संबंधित निर्धारित सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना विभाग के नोडल अधिकारी आशीष वस्तोगी सहित मास्टर ट्रेनर वमन कुमार एवं राजीव सेठ ने प्रतिभागियों को जनगणना संबंधित तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया। श्रोताओं इसी तरह से वीडियो गुंजन धर्मशाला में आप जानकारियों सुनते रहेंगे, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आइए आप सभी को लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जी सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का, जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हैं जुड़े हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों और लेके चलते हैं आप सभी को थोड़ा सा ये जानकारी, थोड़ी सी जानकारी जो है वो श्रोतों मौसम से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हल्के बादल जो है वो छाए रहने के साथ धूप खिली थी श्रोतों, और आज भी सेम ही मौसम जो है वो सोमवार के दिन भी रहा है, और साथ ही साथ रोहतांग दर के साथ लगती चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है श्रोतों। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई है। 1 जून को भी आज भी जो है वो प्रदेश में बारिश के आसार बताए थे जो कि हुए भी हैं श्रोतों, है ना। अब सुनिए 6 जून तक पूरे प्रदेश में जो है वो मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है श्रोतों। 3 से 6 जून तक प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में जो है वो चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है श्रोतों। कुल्लू मंडी चंबा कांगड़ा ज़िला में दिन भर बादल छाए रहे। ऊना ज़िला में भी सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे श्रोतों। इससे लोगों को जो है वो प्रचंड गर्मी से श्रोतों काफ़ी हद तक राहत जो है वो मिली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। मौसम के बीच प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी सामान्य से करीब 8 डिग्री की कमी जो है वो दर्ज की गई है श्रोतों। बीते दिनों जो है वो लू की चपेट में चल रही मैदानी ज़िलों में भी अब पारा गिरने लगा है श्रोतों, और गर्मी से कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल रही है। पर्वतीय ज़िलों में सुबह शाम के समय जो है वो मौसम में ठंडक है। मध्य और उच्च पर्वतीय ज़िलों में सुबह और शाम के समय श्रोता हूँ कहीं ना कहीं वो मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है श्रोता, है ना जी। रात को शिमला में न्यूनतम तापमान जो है वो 12.0 रह रहा है। धर्मशाला में जो है वो 15-13 तक आ रहा है, है ना, इतना आ रहा है श्रोतों। और मैं बात करूंगा उसके बाद कांगड़ा मंडी में जो है वो 18.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रह रहा है श्रोतों। तो मई में भी माइनस में 18% कम बरसे बादल। प्रदेश में 1 से 31 मई तक सामान्य से 18% कम बादल जो है वो बरसे हैं श्रोतों। इस अवधि में 63.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है श्रोतों। इस वर्ष 51.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर आपके अपने वीडियो सेट पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। तो आइए श्रोताओं, अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन में 7:30, वक्त रेडियो गुंजन में हुआ है छोटे से अंतराल का और 7:30 समय हर जगह हुआ है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस अंतराल की ओर, बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए जीजीआई के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।
1: अरे अरे, कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी की?

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: इतने सारे पैसे! मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो, मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से। जाओ चाय बना के लाओ।

श्रोता एफ एम एंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोता, हिमाचल में महिलाओं में बढ़ रही है तम्बाकू की लत। हाँ जी, पुरुष में घटी और महिलाओं में बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू वाले नशे का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या में कमी आई है, लेकिन महिलाओं में ये संख्या बढ़ी है। ये खुलासा नेशनल फीमेल हेल्थ सर्वे 6 में हुआ। श्रोतों, इसके साथ ही शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसकी ज़्यादा आदि हैं। हिमाचल प्रदेश में ये सर्वे केंद्र सरकार ने पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रास एजेंसी से 23 जून 2023 से 20 जनवरी 2024 तक का करवाया था। सर्वे के अनुसार 15 साल व अधिक आयु की तंबाकू पदार्थ का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं 1.9% हैं, जबकि 2019-21 के सर्वे में ये आंकड़ा मात्र 1.7% था। इस बार शहरी क्षेत्रों में ये 1.0% और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.0% है। इसके साथ ही 15 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष में तम्बाकू वाले नशे का इस्तेमाल करने वाले 2023-24 में 28.9% रह गया है, जो कि 2019-21 में 32.2% थे। पुरुष में तम्बाकू के सेवन की दर 3.3% घटी है। शहरी पुरुषों में यह आंकड़ा 24.6% और ग्रामीण 29.5% है। चलिए, जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने रहिए आपके अपने रेडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। गूंज अपने पन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, वक्त हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोतों एक। हाँ बिल्कुल श्रोतों, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है प्रादेशिक समाचारों का। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आपके अपने वीडियो सेट पर।
1: शुभारंभ, प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान आज से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
2: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है, जो कि इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मदद करेगी। जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
1: इस दौरान हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू के माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक असर बनेंगे। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है उसको भी आगे बढ़ाएगी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव परिणामों में जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों और मुख्यमंत्री की बात पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों में अपनी हार का पहले से अंदेशा था, इसीलिए वे इन चुनावों को टालना चाहते थे। उन्होंने राज्य सरकार को साजिश करने के बजाय जनहित में निर्णय लेने और केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्थिक सहायता को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की सलाह भी दी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
4: ये चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, BDC मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पे जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
1: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। पंचायती राज संस्थाओं के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जनादेश प्राप्त करने वाले हमीरपुर जिले की बगवाड़ा, गवारडू और कराह पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर धूमल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं गुड इवनिंग, धर्मशाला आप कार्यक्रम सुन रहे थे। क्योंकि अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का, जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आरजे सचिन कपूर को यूँ ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। आपका अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर अब आपसे लेता है अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर ली मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो

0: फ्रिज है फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
4: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
5: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
4: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
6: Oh, shit!

0: छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई, अरे भाई,
0: अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे

हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा। अच्छा ख्याल है आपका।

बजाना न आया, बजाना न आया।

सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ई, ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम।

0: अरे वाह मजनू,
1: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हम

0: बताओ हमको
1: मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना अजी हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा।

तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें हाय।

चूल्हा क्यों फूंकती है चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम थोड़े रोटी थोड़े रोटी आम खा लें।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार।

धीरे मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा

91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।